0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: इस सत्र से पहली बार ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बीना और साथियों के स्वर में आइए अब सुनते हैं ये अगला लोकगीत।

0: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बीना और साथियों के स्वर में गाए जौनसारी लोकगीत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी

क्लिंसमैन्स ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय

0: एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These

नमस्कार देहरादून, मैं प्रियंका जेना लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नई जानकारियों के साथ ठीक पुराने अंदाज में। श्रोताओं, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर सुबह उठते ही पक्षियों की चहचहाट हमें सुनाई ना दे, पहाड़ों की हरियाली धुंधली पड़ जाए, नदियों का पानी कम होने लगे और गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बनाने लगे, क्या हम ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसी दुनिया देना चाहेंगे? शायद आप सभी का जवाब होगा नहीं। तो फिर सवाल ये है कि बदलाव को रोकने की शुरुआत कहाँ से हो? जी हाँ, शुरुआत एक पेड़ से। जी हाँ, इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। सन 1950 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पेड़ों को लगाने, वनों के संरक्षण और पर्यावरण को हरा भरा रखने की प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए श्रोताओं, तो यहाँ के जंगल केवल पेड़ों के समूह नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आजीविका, जैव विविधता और जल स्रोतों की जीवन रेखा है। देहरादून की पहचान भी तो उसकी हरियाली से ही है ना, और प्राकृतिक सुंदरता ही इस देहरादून की पहचान है। इसलिए इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल पौधा लगाना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। असली वन महोत्सव तब सफल होगा श्रोताओं, जब हम उन पौधों को नियमित पानी देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। अगर इन वृक्षों की भी जवान होती तो शायद उनकी भी यही पुकार होती कि हमारी रक्षा करें और हमें ना काटे। कार्यक्रम में आगे और भी बातें होंगी श्रोताओं, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं इस गीत की ओर और सुनते हैं पेड़ों की व्यथा।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रियंका जेना के साथ। और आइए अब पहुंचाते हैं आप तक स्थानीय अखबारों की सुर्खियां, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज कार्यक्रम में आगे क्या सुनेंगे आप। वन महोत्सव के बारे में बातचीत होगी आज मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मंडल वन विभाग उत्तराखंड से धीरज पांडे से। विश्व खेल पत्रकार दिवस पर बातचीत करेंगे दैनिक समाचार पत्र के लेख खेल पत्रकार करण सिंह दयाल से। और अब स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। प्रदेश में वन नेशन वन एजुकेशन की शुरुआत, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर राज्य से वन नेशन वन एजुकेशन की शुरुआत की गई है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में कही। GST दिवस पर सुगम कर व्यवस्था पर चर्चा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त कार्यालय की ओर से सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत थीम पर GST दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सचिव दिलीप जावलकर ने GST को देश की कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि इस प्रणाली ने एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा को साकार किया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत चल रहे आवासीय कार्यों में तेजी लाने के लिए आवास विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। सचिव आर राजेश कुमार ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को 30 से 45 दिनों के भीतर लंबित कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। अब वोट बनवाने, पता बदलवाने के लिए भरना होगा घोषणा पत्र। चुनाव आयोग 14 जुलाई से 13 अगस्त तक देगा नया वोट बनवाने का मौका। जून में सूखा रहा दून, जुलाई में तूफानी अंदाज में पहुंचा मानसून। उत्तराखंड में जून में सूखे जैसे हालात रहे, पर जुलाई में मानसून ने जोरदार एंट्री ली। मंगलवार को झमाझम बारिश ने दून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तरबतर कर दिया और बुधवार को भी बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम निदेशक डॉक्टर सी एस तोमर के अनुसार मानसून की शुरुआत सकारात्मक है और अगले कुछ दिनों तक अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। हरिद्वार में भी 1-2 दिन में बारिश की पूरी तरह सक्रिय होने की उम्मीद है। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और ले चलते हैं आपको इस अगले गीत की ओर।

0: बारिश की हल्की फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और हरियाली की नई उम्मीद, यही तो है वन महोत्सव का संदेश। मानसून की दस्तक के साथ ही शुरुआत हो जाती है वन महोत्सव की। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की वन महोत्सव की। एक पौधा केवल पेड़ नहीं बनता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, जीवन और प्रकृति का अनमोल उपहार बनता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब वन महोत्सव को लेकर पहुंचाते हैं आप तक ये बातचीत मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मंडल वन विभाग उत्तराखंड से धीरज पांडे से।
1: मानसून जैसे ही शुरुआत होती है, वन विभाग के स्तर पर एक वृहद कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसे हम वन महोत्सव कहते हैं। वन महोत्सव का अर्थ है कि फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करने का एक उत्सव। उसमें हमारा प्रयास ये होता है कि एक एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव, वृक्षारोपण की एक ड्राइव चलाई जाए, जिसमें वन विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी समन्वय हो और उसके साथ साथ जो लोकल हमारे जनसहभागिता है, स्थानीय लोगों का भी उसमें सहयोग प्राप्त किया जाए और एक प्रकृति के संरक्षण की तरफ का एक संदेश आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। इसमें सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और एनजीओ को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और एक एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव के माध्यम से यही प्रयास किया जाता है कि जो हरियाली है या जो पेड़ों ने जो हमको दिया है, उसको हम किस प्रकार से एक सोसाइटी को वापस हम लोग कर सकते हैं।
0: तो वन महोत्सव में इस बार वन विभाग उत्तराखंड किस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और किस तरह से हम वृक्षारोपण को और बढ़ावा दे रहे हैं?
1: देखिए, वन महोत्सव की शुरुआत जैसा कि आपने बताया 1 जुलाई से प्रारंभ हमारा हो चुका है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा प्रयास ये होता है कि एक जनपद में एक जन जागरूकता के साथ इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। एक वृहद कार्यक्रम हरेला का कार्यक्रम होता है जो हम लोग 16 जुलाई को आयोजित करेंगे। उसमें पूरे प्रदेश स्तर पर 10 लाख पौधे एक दिन में लगाने का लक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें कुमाऊं मंडल में लगभग 4.5 लाख पौध लगेगी और गढ़वाल मंडल में लगभग 5.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। इसमें प्रत्येक जनपद में वृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा, उनका सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो अन्य रेखीय विभाग हैं, उन सभी विभागों के साथ मिलकर के आधार पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की भी इसमें सहभागिता होगी और हमारा प्रयास ये होगा कि एक पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा सार्थक संदेश हम लोग दे पाएं।
0: वन विभाग उत्तराखंड किस तरह से वनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है?
1: देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में 70% से अधिक वन क्षेत्र है और वनों की महत्ता और पर्यावरण संरक्षण की महत्ता ये स्थानीय लोग भी बहुत भलीभांति जानते हैं। हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में आपदा से भी प्रदेश में कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके से हम इन बहुत सारी दिक्कतों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग आजकल पर्यावरण के एक बहुत टॉपिक के रूप में सामने आ रहा है और हम लोग उसको अनुभव भी कर रहे हैं। बुरांस की फ्लावरिंग अलग समय पर हो रही है, जंगली जानवरों का माइग्रेशन हो रहा है, टाइगर्स का बड़े एल्टीट्यूड पे पहुंचना हम आम रूप से देख पा रहे हैं, जो पहले तराई के जंगलों में या नीचे क्षेत्रों में मिलते थे वो अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे साइंस हैं जो प्रकृति हमको दे रही है, जो हमको आगाह कर रही है कि पर्यावरण के प्रति हमारा नजरिया और थोड़ा सेंसिटिव होने की हमें आवश्यकता। तो विभाग के स्तर पर बहुत सारे प्रयास इसमें किए जाते हैं। हमारी कोशिश है कि देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो केवल वन विभाग के लिए अपने दम पर नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें अन्य विभागों के साथ साथ जन सहभागिता का बहुत बड़ा रोल है। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है और उस जन सहभागिता के माध्यम से हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी एक डेवलप हो और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक अच्छा संदेश लोगों में जाए, क्यों इसकी आवश्यकता है इसके बारे में लोग विचार करें, सोचें। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो संस्कृति और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में पर्यावरण को एक बहुत महत्ता दी गई है, उनके बारे में बताया गया है कि क्यों इनकी इम्पोर्टेंस है और वही उस तरफ हमें लौटने की भी आवश्यकता है। वन विभाग के स्तर से ये प्रयास किया जाता है कि वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति विभाग जो प्रयास कर रहा है, अभी हम मानव वन्यजीव संघर्ष की बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर वर्ष सामने आती है, तो इनके निदान के लिए भी प्रयास हमारे जारी रहते हैं। विभाग की तरफ से सार्थक प्रयास किए जाते हैं जिसमें जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। प्लांटेशंस में भी हम लोग अब सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं प्लांटेशंस, जियो टैगिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जा सके और पता चले कि अब पौध की बढ़वार कितनी हो रही है। उसके अतिरिक्त साइट सिलेक्शन, पौधों की प्लांटेशन के बाद उनका रखरखाव करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में विभिन्न स्तर से निर्देश भी जारी किए जाते हैं और उसकी एक अच्छी एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो ये कुछ समेकित प्रयास हैं जो वन विभाग अपने स्तर से करता है।
0: जी, जन सहभागिता इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो जो श्रोता आज आपको कार्यक्रम के
2: माध्यम से सुन रहे हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वन महोत्सव पर?
1: देखिए, आपके माध्यम से हम उनसे कहना चाहते हैं कि प्रकृति को और समझने का प्रयास करें, प्रकृति को और करीब से जानने का प्रयास करें, और एक संकल्प लें कि हम लोग इस वर्ष यदि हम लोग संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, उत्तराखंड में देवभूमि के हम लोग निवासी हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक पौधा लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा। यदि हम इस संकल्प के साथ इस वन महोत्सव की शुरुआत करते हैं और एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत अच्छा सार्थक एक पहल हम लोग कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हरेला कार्यक्रम की महत्ता जो मैंने जैसे आपको बताया, उसके क्रम में हम लोग जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी पूरे कर पाएंगे और देहरादून को और बाकी जो हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ साथ कंजर्वेशन की भी आवश्यकता है, उनको हम अच्छे ग्रीन लंग्स यानी ऐसे हरित क्षेत्र दे पाएंगे जिससे कि स्थानीय निवासियों को भी अवश्य लाभ प्राप्त हो सके।
2: बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरज पांडे जी, आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से हमारे साथ जुड़े और आपने देहरादून वासियों को आज वन महोत्सव के बारे में जानकारी साझा की। आपका आभार।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस भी हम मनाते हैं। खेल केवल मैदान में नहीं जीते जाते, उनकी हर धड़कन, हर संघर्ष और हर जीत की कहानी दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे खेल पत्रकार। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर हम उन सभी खेल पत्रकारों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जिनकी कलम और आवाज़ खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और सफलता को जन जन तक पहुँचाने का काम करती है। श्रोताओं, एक बेहतरीन खेल पत्रकार केवल स्कोर नहीं बताता, बल्कि उस स्कोर के पीछे छिपे जुनून, अनुशासन और समर्पण की कहानी भी सुनाता है। तो आइए अब इस दिन के बारे में और विस्तार से बातचीत करते हैं दैनिक समाचार पत्र के खेल पत्रकार करण सिंह दयाल से।

0: हमारे साथ भी जुड़े हैं अमर उजाला अखबार के खेल पत्रकार यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करण सिंह दयाल। तो सबसे पहले तो करण सिंह दयाल जी, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में और बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिन की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके जितने भी श्रोता है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आज के दिन को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस के तौर पर मनाते हैं जो कि सभी खेल पत्रकारों को डेडिकेटेड है। तो आज का जो ये दिन है इसको आप किस रूप में देखते हैं?
1: मैं समझता हूँ कि ये हर एक पत्रकार के लिए, हर एक खिलाड़ी के लिए बहुत विशेष दिन होता है, और उससे ज्यादा जो हमारे पाठक, हमारे दर्शक होते हैं उनके लिए भी विशेष होता है, क्योंकि ये न सिर्फ एक दिन है बल्कि हम हर दिन जब स्पोर्ट्स की कवरेज करते हैं तो उसमें हमें हर दिन ऐसा लगता है कि आज हम कुछ इतना अच्छा अच्छे से कवर करें। जितना ही बेहतर खिलाड़ी अपने ग्राउंड में प्रतिभा करता है उतना ही हम उसको लोगों तक, जो हमारे पाठक हैं, दर्शक हैं, उन तक हम उसको पहुंचा पाए। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम हर साल जो ये खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे पूरे देश खेल के लिए एक अद्भुत दिन इसलिए भी है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब आउटडोर गेम्स के प्रति युवाओं को जो रुझान है वो अब बदल रहा है। पहले कुछ पारंपरिक खेल हुआ करते थे, कुछ ही खेलों के बारे में लोग जानते थे, लेकिन अब बहुत सारे खेल ऐसे हैं, खासकर अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसपे युवा अब निकल के सामने आ रहे हैं और एक नई पहचान बना रहे हैं।
0: दैनिक समाचार पत्र में विगत कई वर्षों से इस पत्रकारिता को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, खेल पत्रकारिता, तो जानना चाहेंगे जो ये पत्रकारिता होती है, खेल पत्रकारिता का जो सेगमेंट होता है उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं?
1: जी प्रियंका जी, वैसे तो पत्रकारिता चाहे किसी भी फील्ड का हो चैलेंजिंग, पूरा चुनौतीपूर्ण ही रहता है, लेकिन अगर खास अगर हम खेल पत्रकारिता की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट लंबा गेम है, फुटबॉल की बात करें फुटबॉल भी एक लंबा गेम है, और इस तरह के अलग अलग गेम है, समय समय पे उनकी अलग अलग रूपरेखाएं होती है, अलग अलग फील्ड पे वो होती है। लेकिन अगर सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक पत्रकार के नाते मुझे सारे खेल के बारे में पता होना चाहिए, फिर सिर्फ एक या दो गेम नहीं बल्कि जितने भी गेम हम देखते आए हैं, खासतौर पे आउटडोर जो गेम्स होते हैं उन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम उतनी बारीकी से अच्छे से उसको लिख पाएंगे, उतने अच्छे से उसको फ्रेम कर पाएंगे जितनी ज़्यादा हमें उसकी नॉलेज होगी। तो ये मैं ऐसा अक्सर करता हूँ कि जो गेम, जो टूर्नामेंट मैं कवर करने जाता हूँ, पहले उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लेता हूँ कि वो गेम किस तरह का है, उसके नियम कायदे कैसे होते हैं, कितने का स्पॉट होता है, कितने लोग खेलते हैं। हालांकि पत्रकारिता जब हम करते हैं किसी भी फील्ड की तो हमें हर एक चीज़ के होमवर्क करनी होती है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन गेम्स में थोड़ा सा अलग इसलिए है और थोड़ा सा चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि हमें हर गेम को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और खिलाड़ी की मेहनत को समझना पड़ता है कि वो, क्योंकि मैदान में पसीना बहाना इतना आसान नहीं होता, और हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा कि हम हमारी लेखनी से किसी भी खिलाड़ी का मनोबल ना टूटे, ना कमजोर हो, ताकि वो आने वाले दिनों में बेहतर ना कर पाए। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो लिखे, जो हम लोगों को, पाठकों तक पहुंचाएं, वो बिल्कुल सटीक जानकारी हो और सही जानकारी।
0: उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं खेल जगत के क्षेत्र में, समाचारों की कुछ सुर्खियां आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें?
1: जी, उत्तराखंड के लिहाज से बीता साल 2025 बहुत खास रहा खेल के लिहाज से, क्योंकि 2025 में हमारे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए जिसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया और हम अंक तालिका में ऊपर भी आए। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रीय खेल हुए जिसमें हमारे खासकर उत्तराखंड के युवाओं ने, खिलाड़ियों ने, एथलीट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद अगर हम हाल ही की बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप हुई है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, CBSE की नॉर्थ जोन चैंपियनशिप बॉक्सिंग हुई है, और इस तरह के बहुत सारे खेल, अभी महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है। तो उत्तराखंड के कोने कोने से जितने भी खिलाड़ी हैं जो खेत खलियान में खेलते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान मिला अपना हुनर दिखाने के लिए। तो खेल के लिहाज से निश्चित तौर पर उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की है, और इस तरह के टूर्नामेंट जब हमारे राज्य में होते हैं तो इसका निश्चित तौर पर हमारे खिलाड़ियों को, हमारे राज्य को लाभ पहुंचता है।
0: बहुत धन्यवाद आपका करण सिंह दयाल जी, आज आप कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से हमारे साथ जुड़े और आपने आज के इस विशेष दिन के बारे में हमारे श्रोताओं संग कुछ जानकारी साझा की। आपका आभार और पुनः शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, और आपने भी हमें इस खास मौके पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये अंक पसंद आया होगा और इसी गीत के साथ अब वक्त चला है कार्यक्रम से आपको अलविदा कहने का। लेकिन नोट कर लीजिए तब तक हमारा पता, ताकि आप हमें लिख भेज सके पत्रों के माध्यम से अपना प्यार। तो हमारा पता है श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून, पिन है 24801। ईमेल एड्रेस है namaskardehradun@gmail.com। और अब इसी के साथ ही मुझे यानी प्रियंका जेना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। नमस्कार देहरादून।

0: आप सुन रहे थे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून के साप्ताहिक कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में मैं रागिनी बिंजोला आपका स्वागत करती हूँ। आज की चिट्ठी आई है नैनीताल से, तो आइए जानते हैं कि बीते दिनों में नैनीताल जिले में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के पहले राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय की। श्रोताओं, हल्द्वानी के गोलापार में प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को नई गति मिली है। वन विभाग से भूमि का अंतिम हस्तांतरण होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है और भविष्य में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की नई पहचान बनेगा। इसी क्रम में राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया, जिसमें खेल शिक्षा, आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और खेल अधोसंरचना पर विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। आस्था की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में स्थापना दिवस 15 जून को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में मनाया गया। बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु नैनीताल पहुंचे।

0: महाभाग का पाठ खुलने के साथ ही दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पार्किंग और यातायात की व्यापक व्यवस्थाएं की, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। और अब रुख करते हैं ग्रामीण विकास और खेती की ओर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से कोटाबाग विकास खंड में जैविक, प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 44 लाख रुपए की परियोजना संचालित की जा रही है। फिलहाल ये योजना 5 गांवों में लागू है। इस पहल के बाद किसान रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि इससे खेती की लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी जिले को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में प्रोत्साहन राशि भेजी गई। अधिकारियों के अनुसार कुमाऊं मंडल के लाभार्थियों को लगभग 2,35,00,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। और अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। रामनगर स्थित कॉर्बेट लैंडस्केप में पहली बार दुर्लभ नाब बिल्ड डक पक्षी दिखाई दिया है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ये पक्षी क्षेत्र में पहली बार दर्ज किया गया है। वन विभाग ने इसे संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत माना है। हाथीडगर जलाशय में इस पक्षी की मौजूदगी ने पक्षी प्रेमियों और वन अधिकारियों में उत्साह बढ़ाया है। विभाग अब इसकी जानकारी ई बर्ड प्लेटफॉर्म पर दर्ज करेगा तथा आसपास के अन्य जलाशयों में भी इसकी मौजूदगी का अध्ययन किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को जन भागीदारी से जोड़ते हुए एक नई पहल शुरू की है। प्लास्टिक कचरा लाओ और 2 रुपए पाओ अभियान के तहत लोग प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और अन्य पुनर्चक्रण योग्य कचरा निर्धारित केंद्रों पर जमा कर सकेंगे। प्रत्येक वस्तु जमा करने पर संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में 2 रुपए भेजे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त वातावरण तैयार करना और लोगों को कचरा प्रबंधन के प्रति प्रोत्साहित करना है। सड़क सुरक्षा की अगर बात की जाए तो नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत अब नैनीताल जनपद में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर जागरूकता बोर्ड लगाए गए हैं और पर्यटकों के लिए भी आवश्यक यातायात संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का मानना है कि सड़क सुरक्षा में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो श्रोताओं, इन प्रयासों से स्पष्ट है कि जिला विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि नैनीताल जिला आने वाले समय में भी विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, आज की जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है। मुझे यानी रागिनी बिंजोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये थी क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सुर और आवाज का ऐसा संगम जो कभी पुराना नहीं होता, वो नगमे जो हर दौर में गुनगुनाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं सदाबहार गीतों का ये खूबसूरत सिलसिला।

0: नया दौर फिल्म से आप सुन रहे थे गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। ओपी नैयर का संगीत था साहिर लुधियानवी की बोल। आइए सुनते हैं अगला गीत आराधना फिल्म से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत एस टी बर्मन का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: प्यार है,
1: पापा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: मन में उमंग हो और चेहरे पर मुस्कान और कदम किसी मीठे सपने की ओर, तो हर गली प्यार की गली लगने लगती है।

पड़ोसन फिल्म से आप सुन रहे थे गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में धुन मिलाई थी आर डी बर्मन ने और बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। आई मिलन की बेला फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र की शब्द रचना, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: अंगूर फिल्म से आइए अब आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। धुन बनाई है आदि बर्मन ने।

0: तेरे घर के सामने फिल्म से आप सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत था एस टी बर्मन का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: चोरी चोरी फिल्म से आइए सुनते हैं यह अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। संगीत है शंकर जयकिशन का।

जी हाँ, दिल में कोई ख्वाब और होंठों पर मुस्कान, और साथ हो मधुर संगीत का तो हर मौसम सुहाना लगता है। खुशनुमा एहसास को सुरों में पिरोता ये गीत, आइए सुनते हैं। मेरे जीवन साथी फिल्म से आवाज़ किशोर कुमार की, आदि बर्मन ने धुन बनाई है, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: जुगे आसमान फिल्म से आप सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शंकर जयकिशन का संगीत था हसरत जयपुरी के बोल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ब्लैकमेल फिल्म से आइए अब सुनते हैं यंथिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप योशिता पांडे से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से 20,000 से अधिक उपनल कर्मी लाभान्वित होंगे। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश में 66 स्थानों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 4 नए खेलों, शूटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक व आइस स्पोर्ट्स को राज्य सूची में शामिल किया है। चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश। हरेला पर्व के तहत इस बार देहरादून जिले में 15,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान खुलने के बाद से एक माह के भीतर 7,294 पर्यटक पहुंचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, टिहरी व बागेश्वर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और देहरादून के जिलाधिकारी ने कोरोनेशन अस्पताल के औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Pradyogik technology ke fayde aur nuksan, advantages and disadvantages of technology. Aaj ki 21vi shatabdi mein hum technology ke zindagi mein jee rahe hain. Aaj takneek ke bina jeevan ki kalpana karna mushkil hai. Parivahan ke liye hum car, bus, motorcycle, plane, train ka istemal karte hain. Apne mitron, parivar se baat karne ke liye फोन का इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के लिए अब तो एलईडी टीवी हमारे पास है। रसोई में खाना, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की सजावट के लिए आज अनेक तरह के आधुनिक तरह के लाइट्स का इस्तेमाल होते हैं। गर्मी सर्दी के मौसम में राहत देने के लिए अब एसी, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत प्रचलित हो गया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर घर में एसी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज विज्ञान की मदद से टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। अब हमको बिजली, टीवी, पंखा, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे आधुनिक चीजों की आदत हो गई है। हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी उपकरण और सेवाएं, दैट इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज बाय अस, घरेलू उपकरण, पंखा, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक पानी का मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली सप्लाई, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू काम के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, कैमरा, संचार के लिए इंटरनेट सेवा, मनोरंजन के लिए टेलीविजन, सिनेमा, कपड़े धोने और सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, संचार यानी बात करने के लिए फोन, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, रसोई घर के लिए ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन स्टोव, स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकी और सेवाएं जैसे एक्सरे मशीन्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स,

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: टेक्नोलॉजी के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो घर बैठे ट्रेन, प्लेन, बस का टिकट खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अब अनेक ऐप से ट्रेन की स्थिति, विलंब स्थिति, अन्य जानकारी पा सकते हैं। घर बैठे शिक्षा। अब विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कोर्स ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस तरह घर बैठे शिक्षा पाना संभव हुआ है। आज अनेक वेबसाइट पर लोग पढ़ाने का काम करते हैं। विद्यार्थी घर बैठे वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब महंगी फीस देकर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री कॉलिंग और फ्री वीडियो की सुविधा भी है। आज कई नेटवर्क्स कम शुल्क में अच्छी और फ्री वीडियो और कॉलिंग सुविधा दे रही है। आजकल हम अपने मित्रों, प्रियजनों से असीमित मात्रा में बात कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं था क्योंकि फोन सेवाएं बहुत अधिक महंगी थी। अब हम वीडियो फ्री में अपने फोन या कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। घर का काम हुआ आसान। अवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन चूल्हा जैसे उपकरणों ने रसोई का काम सरल बना दिया है। आज की गृहिणी यानी होम मेकर्स वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है, इस तरह उसकी मेहनत बचती है। घर में रोशनी। अब एलईडी तकनीक वाले बल्ब बाजार में आ गए हैं जो बहुत कम बिजली लेकर अधिक रोशनी देती है। इस तरह बिजली की बचत होती है और देश के गांव-गांव में बिजली जा रही है। लोगों को बिजली के खर्चे में बहुत बचत हुई है। अब देश में अधिकतर महिलाएं गैस पर खाना पकाने लगी है। इससे उनको धुआं नहीं लगता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से गैस के नए भंडार की खोज हुई है। गोबर और कचरे से भी रसोई गैस बनाने की तकनीक बनाई जा रही है। सीएनजी गैस के इस्तेमाल आजकल हर मेट्रो सिटी में बस और अन्य वाहनों में हो रहा है। इससे वायु प्रदूषण कम हुआ है। आजकल डेंगू, मलेरिया, खासकर चिकनगुनिया, कैंसर, ओवेरियन डिजीज, टीबी, एस्मा, इनफर्टिलिटी और कई सारे डिजीजेस हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में रोज नए नए शोध और खोज हो रही है। इससे हमें बहुत लाभ हुए हैं। चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी आ जाने से भारत में मृत्यु दर में गिरावट आई है। दैट मीन्स द डेथ रेट हैज गॉन डाउन।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, इसके नुकसान भी हैं। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के नुकसान ये है कि हिंसा, खून खराबा वाले वीडियो गेम आजकल हर बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके नुकसान भी बहुत है। आज छोटे बच्चों को भी इंटरनेट की लत लग गई है। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सारा दिन फोन या कंप्यूटर पर ही चिपके रहते हैं। बच्चे घर के काम और जिम्मेदारी से भी बचने लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारा समय नष्ट कर देते हैं। अपने कीमती समय का इस्तेमाल अगर बच्चे पढ़ाई में करें तो उनको बहुत फायदा होगा, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे ज्यादा वक्त चैटिंग और वीडियो देखने में बिताते हैं, इस तरह उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आजकल हैकर्स हमारे इंटरनेट बैंक अकाउंट के खाते को हैक करके पैसे की चोरी करते हैं। आए दिन ऐसी खबर आती रहती है, कुछ चोर ATM कार्ड बदलकर क्लोन बनाकर हमारे पैसे चुरा लेते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी ने भी हमारी समस्याएं बढ़ा दी है। आज लुटेरे और चोर हमें फर्जी कॉल करके परेशान करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP नंबर पूछते हैं। आज के लम्हे प्रोग्राम में हमने आपको टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे और नुकसान बताए हैं। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ कर मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। वेल, with this message, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, bye.
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
2: प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

बंटी और बबली फिल्म से आप सुन रहे थे गीत उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गुलजार की शब्द रचना थी और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, आज दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी, नारी और प्रकृति संरक्षण की साझी जिम्मेदारी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर सुनिएगा मनोज सिंह के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत, और रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा प्रादेशिक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और 4:30 रिले किया जाएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आइए फिल्म संगीत में आपको सुनवाते हैं ऐतराज़ फिल्म से अगला गीत अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, हिमेश का संगीत समीर के बोल।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से आइए अब सुनते हैं ये अंतिम गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2024 तक 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि उपनल कर्मियों के लिए संशोधित शासनादेश के अनुसार समान पद समान वेतन का लाभ पाने वालों के लिए कट ऑफ डेट अब 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन्हें चरणबद्ध तरीके से समान पद व समान वेतन प्रदान करेगी। कर्मचारी जिस पद के सापेक्ष कार्यरत हैं उन्हें उसी के अनुरूप न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासनादेश ने यह भी स्पष्ट किया कि उपनल कर्मियों से संबंधित अन्य सभी विषय व भविष्य में उत्पन्न होने वाले विषयों पर मंत्रिमंडल की उप समिति विचार करते हुए अग्रिम कार्रवाई पर संस्तुतियां करेंगी। प्रदेश में मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। सभी 13 जिलों के 66 स्थानों पर यह मॉक अभ्यास किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश स्थान पहली बार शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर रहे हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना, उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारी को परखना है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के माध्यम से विभिन्न विभागों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाए। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर व टिहरी जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में आज सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। चमोली जिले में लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी से आगे गुलाबकोटी के पास मलबा आने से बंद है। प्रशासन ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन ने यात्रियों को भरोसा दिया है कि जल्द मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। राज्य आपदा प्राधिकरण ने चारधाम यात्रियों को मौसम का ताजा अपडेट लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कल देहरादून में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

0: ने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करते बल्कि समाज में विश्वास और नई आशा का संचार भी करते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका त्याग सदैव प्रेरणादायी रहेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कल देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर आवासीय वातावरण भी देना है। हरेला पर्व के तहत इस बार देहरादून जिले में 15,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला अभियान एक माह तक चलेगा। इस दौरान पौधारोपण के माध्यम से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान का कहना है कि यह अभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनेगा। इसके लिए सभी विभागों को रोपण स्थलों का चयन कर माइक्रो स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत हैं मनोज सिंह के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: मनोज सिंह के स्वर में आइए अब सुनते हैं ये अगला लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मनोज सिंह के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम की सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं वन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही मानसून की बारिश भी हो रही है। ऐसे में हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और धरती को स्वर्ग बनाएं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं आप सभी के मैसेज के साथ। व्हाट्सएप फरमाइश के लिए हमारे श्रोताओं के लगातार हमें मैसेज मिल रहे हैं। कार्यक्रम में पहला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। साथ ये फरमाइश हमें लिखते हैं, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है, दंतरेंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

प्रोग्राम के इस अगले गीत को सुनने का अनुरोध है आप सभी का। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक का लौकिक चंसोलिया। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं आप, ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साहब इराही और महराज जहां। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश अमेलिक भेजी है, गांव कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और साथ में समस्त राजपुताना परिवार। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुर कीरत और साथ में गुरु शब्द सिंह राहुल। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है लोफर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ही अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और साथ में ही माही मलिक, और इसी गीत को सुनना चाहा है। लोरबी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और साथ में ऋषभ मरावी ने, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एमी वहीद रुमानी, डॉक्टर जमीर मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद मुकर्रम और साथ में इनके बहुत सारे मित्र, और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, राजा चैतन्य मस्कीन और साथ में मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशव और साथ में रेदान खुराना, और इसी गीत को सुनना चाहा है। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और मिला दीपक और स्वाति, गमरिया जमशेदपुर से मैसेज लिखते हैं विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और साथ में आर्य कुमार, जिला मुरादाबाद गाँव दुलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में है नरकेस खातून, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश अग्निजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और साथ में ही निमित आहूजा, राजकोट से मैसेज हमें लिखते हैं जेमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा और साथ में है राकेश जैन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और साथ में ही बिट्टू कुमार, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से हैं नाना लामसी, मीना, तेजस और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और साथ में पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप है उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। भेरूलाल बागतरिया धाकड़ भोला परवीन रियांश और साथ में प्रतीक बागतरिया, ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं गांव जखण गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल। साथ ही फरमाइश लिखते हैं कांति निकेतन राजनगर से रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि कोमल गुप्ता, कुशेश्वर कांति गुप्ता। लखनऊ ऐशबाग से आप हैं रानी मुकेश गुप्ता, नीलम रश्मि कुसुम और साथ में रूपा, ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सुरोज जायसवाल, कमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज नवीद, अनम, यशप, सुहेल और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित बयाल कुमार, प्रथमेश कुमार, सरबद, प्रणाली देशमुख और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने मैसेज हमें लिख भेजा है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और साथ में प्रभुलाल, ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है अनारकली बाजार चक्राओ से ही सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेज।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम बर्ड सफरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। व्हाइटफील्ड बंगलुरु से ही भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और साथ में ही पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से ही किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मन मानस और साथ में है कनिका पटेल। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। दांडी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, साथ ये मैसेज श्रोता लिखते हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और बिले से डिकेस्टो, ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनबर रिजवाना और साथ में ही अब्दुल्ला आज़ाद, और इसी गीत को सुनना चाहा है। छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई, नूर आयशा अहमद, दुख नारानी, जूही इकबाल और साथ में इमरान अहमद, कपास हेड़ा बाड़ा नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसबा परी राबिया मंतशा और साथ में आशु अहमद फूल वाली, ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नेहा निशा और साथ में हैं छन्नूलाल श्रीवास और उज्जैन साहू, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं। मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता गवानकर, प्रिंस और एकांश गवानकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवानकर, सिद्धांत और अर्जुन गवानकर, ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं पांडरकवड़ा जिला यवतमाल से अनिल बुरांडी, उषा नुश्री और धनश्री बुरांडी, बल्लार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची रेक्लब लोढ़े, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं। मुकेश की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है पहचान।

कार्यक्रम का यह अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काली, वंदना आदेश कुमार काली और साथ में इनकी प्रोफेसर वसुधा वज्र सेन। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं गांव राम सहाय जिला सहारनपुर से बीरमवती सविता संदीप कुमार अनुदेव और साथ में युवान। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आप हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधे नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं कच्छ गुजरात से गंगा बनकर, गोविंद बनकर, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल, विजय विराट, रमेश महेश, जयंती और साथ में इनका पूरा बनकर परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहे जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुजायुषी, रमेश चंद्र वर्मा और साथ में इनके मित्रगण। गांव सांगली जिले के जत शहर से आप हैं अल्ताफ हुजरी, सैफुल्ला सबात, कीरत और साथ में रेहान शेख। और इसी गीत को सुनना चाहा है गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से

मिंटू टोमस, पिंकी लवली और साथ में आरती अरोड़ा। मैसेज हमारी श्रोताओं ने लिख भेजा है। जिला कासगंज यूपी से योगी दडाए, गीता निहारी का नायक सुशांत और साथ में इनके बहुत सारे मित्र, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं। दाऊद सराय सहारनपुर से अनबर साबरी, शन्नु बुद्धसिर साबरी मुजकिर और साथ में जरीफ अंसारी, ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहर का, नर्मदा और साथ में सुजाता पोहरकार, ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया वश, सुमन मेगा राशि और साथ में ही कीर्ति भारती, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और साथ में चंपा साहू, साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और साथ में अर्पिता जी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: समय 11:33 और 44 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने

झारखंड से असम जावेश अगूब तंजुम साथ में नजबुल हुदा और इसी गीत को सुनना चाहे उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी बोधराज खोर वाली गीति और साथ में हैं भानु प्रकाश नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी नाजम बेगम मोहम्मद आशिफ हाशमी मोहम्मद तैमूर साथ में मोहम्मद कलीम अंसारी लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर मोहम्मद हुजैफा मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद शाहरुख और साथ में इनका पूरा परिवार और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश अमेलिक भेजी है जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत अरुणा चेतन और साथ में है सुलोचना भगत नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी महजबी निसार नुजत फातिमा अबरार अहमद अंसारी इसरार अंसारी इकबाल अहमद अंसारी तस्लीम रजा और साथ में पप्पू भाई अंसारी और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज अमेलिक भेजा है गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन आबेद आयशा और साथ में स्नेहा भानु जैनुद्दीन ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं गांव हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकर नाइमा रंजूबाई युवराज और साथ में शिवांगी धाकर और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिखते हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर साथ ये मैसेज श्रोता लिखते हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना आशित और खुशी गोस्वामी आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम है बॉबी

कार्यक्रम वर्ष से फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं डिफेंस कॉलोनी देहरादून से हैं वी के सिंह, हॉली चौक दिल्ली से हैं जयराम खुरवाल, सचिन अमन और साथ में हैं इनके परिवारजन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। साथ ही ये फरमाइश हमें लिख भेजी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल लक्ष्मी, प्रियंका सृष्टि, बनी और शौर्य और साथ में है दिनेश। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और साथ में हैं अनामिका सिंह। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं, आप हैं बाजार रोड बुंगी सपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कब्रू निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब और पलक लुबना और साथ में इनकी यश मंसूरी। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदेल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से हैं भाई रफ साहिब सईद, भाई राशिद, भाई असद, भाई फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और साथ में रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और साथ में है शोएब खान, लाल कुर्ती रोड के कंट से राजेश शर्मा, मंजू निशांत कौशिकी, दीपाली वर्मा, युवान और साथ में आर के राजा। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवासी अब्दुल गफा डावर, अब्दुल हक जेवलक डावर। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप मैसेज लिखते हैं लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निम्मी पम्मी, सिया हर्षिता ध्रुव, साथ में निशांत ध्रुव, चौटाला हरियाणा से ये मैसेज श्रोता लिखते हैं। आपने फरमाइश लिख भेजी है दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है तेलंगाना चुटपाल से कस्तूरी डामाडू बोमाडू और साथ में इनके परिवारजन। आकोट से ही विनायक बेंडे, बंगला विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए के संजीव डाबेराव। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर मैसेज हमारी श्रोता लिखते हैं, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं लिखा है कहाँ से मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन आपने नाम लिखा है तनुज कुमार, जो सुनना चाहते हैं कि किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल करें। जी बिल्कुल, आपका नाम कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। मैसेज श्रोताओं ने हमें भेजा है सी गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी और साथ में कृतिका और रमेश चतुर्डांगी, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें भेजा है गांव जाखुद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजी, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं नाला सुपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, महिरा शेख और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता लिखते हैं कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम, डॉक्टर आमिर अंसारी और साथ में है मुन्ना नजीम, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजम, बेगम रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और साथ में है माहिरा नूर, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारतीय जानवी रंबाड़े, काशी निवास नागपुर से हर्षल रंबाड़े और साथ में वैष्णवी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से आप हैं संजीता मार्कंडे, संजय, बेबी किट्टू और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य लाडू कोयल मल्होत्रा, इनकी पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल डुग्गू और साथ में है भाविक सिक्का। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें भेजा है बटिंडा रोड मंडी डब्बाले से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया नारंग और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आपने मैसेज लिख भेजा है गुजरात गांधीग्राम से हैं जगदीश जोहरी और इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं गांव बडागर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और साथ में करमजीत कौर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है सावन भादो।

0: समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग है नशीला।
1: प्रोग्राम के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, धामण गांव जिला बुलढाणा से समर्थ दादा देठी पाटिल, भागवत लक्ष्मी कुमारी सानिका देठी पाटिल। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, शांति निवास लेहे गांव रेलवे जिला अमरावती से कुमारी कल्पना कुराड़ी, वंदना आशीष और दीपक कुराड़ी, और इसी गीत को सुनना चाहा है दंतरेंगी के हैं भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती विनीत और साथ में है रुद्र वर्मा। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं जलालाबाद मुजफ्फरनगर से राशिद मंसूरी आयान और साथ में सयान मंसूरी। ये मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने फरमाइश लिख भेजी है, आप है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन बंजानी नीलम स्वाति और साथ में है कीशु। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज है लिखते हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली सभी तहनिकी त्रिवेणी ऋषिकेश जीविका और सानिका दली पुनावली पुणे से ही अजय सोनबनी करिश्मा विका और विशाखा सोनबनी। साथ ही फरमाइश होता हमें लिखते हैं सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा जनम और साथ में मुद्दसर हुसैन। ये फरमाइश होता लिखते हैं गांव गाला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन, साथ में इनके परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, कोरोना मीना अश्विनी और साथ में है वो पुल कांबड़े। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। अजमेर शरीफ से मैसेज लिखते हैं सैयद आलम हाशमी, गुलना सलमा नाज, असद अरहम और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं फरुखाबाद साहबगंज चौराहा से हैं सुरेश चौरसिया और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज हमें लिख भेजा है रहाट गांव कोम पमरावती से हर्षा रामेकर, दिलीप पक्षे, रुद्रा रुचिका रामेकर, साथ में इनके परिवारजन। जमशेदपुर झारखंड से मैसेज श्रोता लिखते हैं सुपाईसाई गांव है इनका, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, देवेंद्र जी और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप हैं गुन्नूर से आदिर कमर तस्दीक अली और साथ में इनके परिवारजन, कस्बा गुन्नूर यूपी से हैं फारूक अली खान, फेजी फरखास, फरहीन, फारिया और ताहिरा। साथ ये मैसेज श्रोता लिखते हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आपने फरमाइश लिख भेजी है देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गनुलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आरन राज, रोहित और साथ में पीयूष कुमार, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है साजन।

0: श्रोताओं, कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलोचना के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसके लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर 7080000731 है। और चलते चलते उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा था, आप ही वर्णिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और साथ में आरती अरोड़ा। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं करनाल से गुरविंदर सिंह पादे दजित बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा और साथ में जी एस रामगढ़िया। और इसी गीत को सुनना चाहा था रेलवे रोड गंज डिंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शब्द मनवा, नजमा और साथ में इनकी भाभी सरिता गौतम ने। साथ ही मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा था, आप हैं श्रोता जिन्होंने मैसेज हमें लिखा है ऊपरकोट मोहल्ला चौकोटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाह नवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बीमल। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरी नौरी नवासन और सौत मेहन की मोहम्मद कैफ अंसारी। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं गाँव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना आफी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव ककराली पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य और इनके परिवारजन। और साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं आपने फरमाइश लिख भेजी है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया ने। श्रोता इसी के साथ का आज का ये प्रोग्राम यहीं तक, यह आकाशवाणी देहरादून है 12 बजे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The Delhi Police Special Cell has arrested four accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, two foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August the 28th. In Ukraine, 11 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kyiv as part of a broader wave of Russian overnight attacks. Local media reported that several explosions were heard across parts of the city overnight into Thursday. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Yuri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002 this morning. And with that, we end this news bulletin.
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए FM न्यूज़ हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से 20,000 से अधिक उपनल कर्मी लाभान्वित होंगे। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश के 66 स्थानों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 4 नए खेलों शूटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक व आइस स्पोर्ट्स को राज्य सूची में शामिल किया है। चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश। देहरादून के जिलाधिकारी ने कल रात कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। हरेला पर्व के तहत इस बार देहरादून जिले में 15,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान खुलने के बाद से एक माह के भीतर 7,294 पर्यटक पहुंचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, टिहरी व बागेश्वर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और देहरादून के जिलाधिकारी ने कोरोनेशन अस्पताल की औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
3: FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:12 हुए हैं। DJ सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए पुष्पा रावत के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी पुष्पा रावत के गाए भजन। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब पहले सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

0: आप सभी सखियों को अभिज्ञा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो सखी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। सखियों, हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, जिसे मनाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं ना कि वन हमारे जीवन का आधार है। ये हमें शुद्ध हवा, साफ पानी, दवाइयाँ, फल, लकड़ी और अनेक जीव जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। सखियों, छोटे छोटे प्रयास बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने घर के आसपास एक पौधा लगाइए, वर्षा जल बचाइए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कीजिए और घर से बाहर जाएं तो खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करें। और हाँ, रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे से खाद बनाकर पौधों में उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति हमें स्वच्छ जीवन देती है, लेकिन बदलती जीवन शैली में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन की दिशा मोड़िए और प्रकृति से जुड़िए। वैसे भी सखियों, नारी और प्रकृति संरक्षण की साझी जिम्मेदारी है और इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्व रखती है। चलिए देर नहीं करते, आपसे बातें करते हैं, मिलते हैं आपसे और सुनते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो,
1: हेलो,
0: आपका नाम क्या है?
1: मैं ककरवा से बात कर रही हूँ, रहने वाली हूँ, मैं रामपुर की हूँ।
0: अच्छा, रामपुर से बात कर रही हैं
1: जी।
0: और नाम क्या है आपका?
1: मैम, कहती हूँ कि मैं बागों की पिछली हूँ फिजाओ में उतना काम है मेरा, बागों की पिछली हूँ फिजाओ में उतना काम है मेरा, हर शख्स को देती हूँ मोहब्बत की कली, यही तो इनाम है मेरा, और चांद सितारे करते हैं मुझसे बातें, इसीलिए तो क्षमा परवीन नाम है मेरा।
0: बहुत खूब, क्षमा जी बताइए कैसी हैं आप?
1: जी मैम, मैं अच्छी हूँ, आज मेरी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, आपसे बात कर रही थी, मैं और भी अच्छी हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने सोचा होगा कि कुछ और सखियों को भी मौका दिया जाए, है ना?
1: बिल्कुल।
0: आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, पर्यावरण को बचाने की, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप?
1: पर्यावरण को बचाने के लिए हाँ मैम, लेडीज भी आगे आ सकती हैं, और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाना होगा, स्वच्छता को लेकर ध्यान रखना होगा, अपना और अपनों का ख्याल रखना होगा, और सामने वाले को भी समझाएं कि स्वच्छता रखे, साफ सफाई के ध्यान दे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि पेड़ पौधों को अगर पानी लगाना हो तो मोटर से नहीं लगाए, बाल्टी से मंगे से ही लगाए तो पानी हमारा ज्यादा बचेगा।
0: हाँ,
1: अगर पोछा लगाए तो पानी को बचाते देखते समय पोछा लगाए, और अगर गाड़ी कोई वाइप कुछ भी धो रही है तो अगर हो सके तो मोटर से न धोएं, पानी बहुत बचता है इससे।
0: हाँ, सही कहा आपने, पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए अगर चले तो बहुत सही रहता है ना।
1: और मैम, मेरे घर के आंगन में करीब करीब 25-30 पौधे इस टाइम लगे हैं, और मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब आपने कहा प्रकृति के बारे में तो मैं पेड़ पौधों को देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ।
0: हाँ, ये तो कुछ स्वाभाविक ही होता है ना।
1: कैम बरसात हो रही है, बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे हैं और बहुत ही अच्छा नजारा हो रहा है।
0: बिल्कुल, आपने तो हमें भी वहाँ पे पहुँचा दिया। ऐसे में आपके मन में कौन सा गीत सुनने की ख्वाहिश आ रही है?
1: मैम, मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर गीत के बोल है, छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दिया दिया। मैं जाती जाती दो लाइनें कहना चाहूंगी।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: खासकर बरसात के लिए। कहते हैं मैम कि जमी की आत्मा से मुलाकात हो रही है, सितारों की कलियों से बात हो रही है, और चांद सितारे रो रही है यादों में किसी की, लोग कह रहे हैं कि बरसात हो रही है।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी बात पर आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

0: हेलो रेडियो सखी,
1: नमस्कार
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है?
1: मैम, मैं सहना जी बोल रही,
0: सहनाज कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सहारनपुर।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैम घर पे काम करते हैं, खाना ही बना रही हूँ।
0: चलिए, अच्छी बात है, खाने का समय है तो खाना ही बनाएंगी। ये बताइए, आपके घर के आसपास जगह है जहाँ बागवानी हो सके?
1: जी मैम है,
0: आपने वहाँ कुछ सब्जियाँ वगैरह उगाई हैं?
1: जी मैम खेत में दुआ रखी, भिंडी लगा रखी फिलहाल। जी
0: यही तो फायदा होता है, अगर हम साग
1: मैम,
0: सब्जी उगाएं अब तो हम जब चाहें उन्हें बना भी सकते हैं, है ना?
1: जी मैम,
0: जी, बागवानी करना आपको कैसा लगता है?
1: मैम अच्छा लगता है। देखो हरियाली देखते है ना
0: कितना जरूरी समझते हैं आप?
1: मैम, बहुत जरूरी समझते हैं, हरी सेहत अच्छी होती है। जी
0: हाँ, बिल्कुल, शुद्ध हवा आती है ना?
1: मैम, जब हम अपने खेत जाते है ना, पेड़ों से है ना हवा चलती है ना, तो मैम बहुत अच्छा लगता है खेत में जाकर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए सहनाज, कि आप बाहर जाती हैं, घर के बाहर खरीदारी करने जाती हैं, है ना? तो साथ में हमें क्या लेकर जाना चाहिए? आप मानती हैं कि कपड़े के या जूट के थैले हमें अपने साथ लेके जाने चाहिए?
1: मैम हम तो कपड़े के ही लेकर जाते हैं।
0: ये बहुत ज़रूरी है, पॉलिथीन का
1: जी
0: उपयोग
1: मैम,
0: कम से कम करना चाहिए, मानती हैं ना आप?
1: जी मैम,
0: तो इस बात के लिए और सबको भी जागरूक करना चाहिए, है ना?
1: जी मैम, रंग
0: चलिए बताइए, गीत कौन सा सुनना है
1: का
0: और गीत की बोल क्या है?
1: कोई सा ही सॉन्ग है।
0: सुनाते हैं आपको रंग फिल्म से एक प्यारा सा गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

0: मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
2: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
1: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
2: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
1: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
2: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत का खास अंग रेडियो सखी, जिसकी रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच, और कार्यक्रम का प्रसारण होता है अगले दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 से 1 बजे तक। और फोन नंबर है 7088001382, यानी 7088001382। कीजिए हमसे बातें और साथ ही सुनिए अपनी पसंद के गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगली कॉल। हेलो,
4: सलाम अलैकुम।
3: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
4: सानिया मलिक से।
3: सानिया, कहाँ से बात कर रही है?
4: जिला सहारनपुर।
3: हमारे नियमित श्रोता हैं आप। सानिया, आज हम बात कर रहे हैं अपने आसपास की प्रकृति की, और ये भी कि प्रकृति की देखरेख करने की महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा होती है इसमें, है ना?
4: हाँ जी मैम, किसी महिला अच्छे से देखभाल कर सकती है, पेड़ पौधों की ध्यान रख सकती है। जेंट्स होते हैं ना, वे तो अपने काम पर चले जाते हैं, महिलाएं संभालती है पेड़ पौधों को, उनका ध्यान रख सकती है।
3: जी, आपके आसपास आपके आंगन में पेड़ पौधे हैं?
4: हाँ जी मैम, जैसे शौक है पेड़ पौधे लगाने का।
3: आप किस तरह ख्याल रखती हैं उनका, बताइए।
4: मैम उनको टाइम टू टाइम पानी डालती हूँ, जब ये देखता है कि सूख गए है, और फिर इन टहनियां जैसे कि बड़ी हो जाती है छटनी कर देती हूँ, और फिर खाद डाल देती हूँ जब देखता है कि अब खाद की जरूरत है पेड़ पौधों को।
3: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ लगाना ही काफी नहीं होता, उनका उनके रख रखाव करना भी बहुत जरूरी होता है ना?
4: और मैम बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पेड़ पौधे लगा देते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, सूख रहे तो सूख रहे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जागरूक हैं और आपको भी प्रकृति के साथ है ना अच्छा लगता है, ये जानकर अच्छा लगा।
4: और मैं तो अभी भी पेड़ पौधों के पास ही बैठी हूँ, बात कर रही आपसे।
3: यानी आसपास हरियाली हो तो मन भी बड़ा प्रसन्न रहता है ना?
4: हाँ जी मैम, जब मेरी आँख खुलती है ना सभी सुबह उठ के, तो मैं पेड़ पौधों के पास आ जाती हूँ एकदम से।
3: और सुबह सुबह पानी भी देती होंगी उन्हें, है ना?
4: हाँ, देखती हूँ कि आज कौन सी कली किस कमरे पर कितनी निकली है, खिली है।
3: चलिए इसी खुशी में बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
4: मैम मूवी का नाम ड्रीम गर्ल।
3: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

0: हेलो रेडियो सखी,
1: नमस्ते बहन जी, कैसे
0: नमस्ते। आपका नाम क्या है?
1: हो? नान जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ।
0: मीनाक्षी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नान जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ।
0: देहरादून से बात कर रही हैं? चलिए, बहुत
1: जी
0: अच्छी
1: नान
0: बात
1: जी,
0: है। बताइए, क्या करती हैं आप?
1: नान जी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर पे
0: जी,
1: रहती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ।
0: आपको पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है?
1: जी नान जी,
0: बागवानी का शौक है?
1: कि हाँ, घर में जैसे बच्चे छोटे छोटे पौधे वगैरह लगा लेते हैं ना, तुलसी वगैरह लगा लेते हैं। जी
0: अच्छा, वैसे आसपास हरियाली हो तो किसे पसंद नहीं है ना?
1: जी बहन जी, हमारे यहाँ तो काफी हरियाली है। जी
0: क्या सोचती हैं आप
1: जी
0: कि प्रकृति के साथ हम महिलाओं का एक खास जुड़ाव होता है ना?
1: बहन जी,
0: तो कितना जरूरी समझती हैं आप पेड़ पौधों का लगाना अपने घर के आसपास?
1: वो तो काफी अच्छा होता है मैम जी, से हरियाली रहेगी तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और वातावरण भी साफ रहता है। हाँ
0: हाँ, चलिए बताइए, गीत संगीत का शौक है आपको?
1: जी बहन जी,
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बादल सुनी मैम जी,
0: बादल?
1: जी
0: और गीत के बोल क्या है?
1: जुगनी जुगनी।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का यह गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

क्यों आपको बता दें, आज यानी 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जिसकी शुरुआत साल 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS द्वारा की गई थी। आज हमें उन लोगों को सम्मान देना चाहिए जो खेलों की हर जीत, हर संघर्ष और हर प्रेरणादायक कहानी को हम तक पहुंचाते हैं, और ये है हमारे खेल पत्रकार। खेल पत्रकार सिर्फ मैच का स्कोर ही नहीं बताते, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, चुनौतियों और सफलता की कहानी भी दुनिया के सामने लाते हैं। आज जब भारतीय महिलाएं खेलों में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं ना, तब उनकी उपलब्धियों को पहचान दिलाने में खेल पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। आकाशवाणी के कुछ प्रमुख खेल पत्रकार हैं जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, डॉक्टर नरोत्तमपुरी, सुरेश सरैया, किशोर भिमानी, जो अपनी मधुर और गहन वर्णात्मक आवाज के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए इस विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों के योगदान का सम्मान करें और खेलों के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, खेलों के लिए प्रोत्साहित करें। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप पर भेज सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-0000-731, 7088-0000-731। होगी आपसे फिर मुलाकात। अब अभिज्ञा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आपको याद दिला दें, रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम प्रादेशिक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्य में की जा रही मॉक ड्रिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इसका निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा राहत कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़काई ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन होने, घरों में मलबा घुसने, नदियों का जलस्तर बढ़ने और सड़कों के बंद होने जैसी स्थिति में विभिन्न विभागों और एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिले के 5 स्थानों पर यह अभ्यास किया जा रहा है।
1: बारे में बताना चाहूँ कि यहाँ पे 5 लोकेशंस हैं जो हमें मिली हैं और जिसमें से लैंडस्लाइड जोन भी है, एक दो नई लोकेशन भी है और सभी जगह पे हमारा बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जैसी घटना की सूचना प्राप्त होती है तो टीम कितना इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंटली कम समय में पहुंच पाती है अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ और वहाँ पे जो भी हताहत है या घायल है या जिनको रेस्क्यू किया जाना है उनको मिनिमम टाइम में आपकी व्यवस्थाएं कितना पीछे से आप होल्डिंग कर पाते, तो उसमें हमारा सारा व्यवस्थाएं ठीक है। टीम जो गैप हमें लग रहा है वो गैप स्टेट लेवल पे भी देखे जाते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको मॉनिटर करते हैं, अपनी टीम्स को उसी अनुसार फिर हम लोग जिसका फीडबैक होता है हम ग्रुप्स के माध्यम से उनको सूचित करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ 61 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच केबल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे बंच केबल कार्य के लिए 4 करोड़ 92 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षल तथा तहसील डुंडा, चिन्यालीसौण, बड़कोट और मोरी क्षेत्र में आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए 3 लाख रुपए प्रति भवन की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से 3 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका शासन आदेश भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी योजना लागू कर दी गई है। योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के लिए मजदूरी दर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्राम्य विकास विभाग के सचिव धीराज करब्याल ने बताया कि नई योजना में 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका और आपदा न्यूनीकरण के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC पूरी हो चुकी है। शेष जॉब कार्ड धारकों से 1 सप्ताह के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत या विकासखंड कार्यालय में EKYC कराने का आग्रह किया गया है। मनरेगा के तहत जिन श्रमिकों की EKYC हो चुकी है उनके वर्तमान जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे। श्री करब्याल ने कहा कि मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को नई योजना में अनुमन्य कार्यों के अनुसार समाहित किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
2: देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने की दिशा में आवास विभाग ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। इसी क्रम में विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में किए जा रहे बाह्य विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवासों का निर्माण पूरा होने के बाद भी अगर बाह्य विकास कार्य लंबित रहते हैं तो लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए सभी एजेंसियां समन्वित रूप से कार्य करते हुए शेष कार्यों को तेजी से पूरा करें। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण के सभी लंबित कार्य आगामी 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक एजेंसी को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजनाओं की नियमित निगरानी पर भी विशेष जोर दिया गया। सचिव आवास ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लाभार्थियों को केवल आवास ही नहीं बल्कि सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़गाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की कार्य योजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए वहां के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है।
4: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहां पर अभी आयोजित की गई थी जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहां से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर यहां से भी उसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंप्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज है वो टूरिज्म आधारित वहां पर जो वर्क है वो ज्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म उसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं।
0: चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहाघाट में एक संस्था के सहयोग से आधुनिक पशु चिकित्सालय उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त पशु चिकित्सालय की स्थापना पशु कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों से पालतू पशुओं के साथ ही घायल और बेसहारा पशुओं को भी गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा मिलेगी।
5: इससे हमारे यहाँ के जितने पशु प्रेमी हैं उन सभी को लाभ मिलेगा, पशुओं को लाभ मिलेगा और जैसा अभी मैंने यहाँ पे भ्रमण किया सभी प्रकार की चिकित्सकीय जो उपकरण है वो यहाँ उपलब्ध है। चिकित्सकीय परामर्श भी ट्रेंड प्रशिक्षित जो डॉक्टर है उनके माध्यम से यहाँ पे दिया जाएगा और जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी देखरेख कर रहे हैं। अलग से अपने एक श्वान केंद्र भी यहाँ पे बना रखा है जहाँ पे निराश्रित श्वान है उनको रखा जाता है तो एक बड़ा ही सराहनीय

पूरा करने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़काई ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थी मुकेश, फिल्म का नाम था सफर, गीत था इंदी विर्क और संगीत कल्याण जैनन जी का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम है सूरज।

ये स्वर थे लता मंगेशकर का फिल्म का नाम था तलाश। गीतकार थी मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थी एसडी बर्मन। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्चे मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं,
2: लेकिन एक

0: खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
7: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
6: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
8: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
7: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
8: क्यों दे दो?
6: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है
7: भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
8: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
7: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
12: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
12: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
8: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
12: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
8: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
6: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
8: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
12: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
12: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
13: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? में बैठ कर
14: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
13: इसके पास
14: जा रहा है।
13: देवदत्त
14: का है।
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
15: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
5: अब मैं राजकुमार

0: सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलड़ू मैं, चलचलू मैं, जल्दी सीख भी जाती।

तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर

0: तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहन है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
6: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आए कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
11: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
8: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
8: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
8: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
11: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
8: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
6: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
8: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
8: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
6: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
12: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
11: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
8: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
6: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
8: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
11: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
8: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
1: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
13: उमंग, उमंग,
14: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किया गया। 2 बजने को ही अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
15: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज़।

0: उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र

0: यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, देश में वीर जाबाज ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा और उसे साकार भी किया। ऐसे थे मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी।

0: सैनिक साथी मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का जन्म 2 जनवरी 1961 को बिहार के शिवहर जिले के पूर्णिया ब्लॉक में हुआ था। इनके पिता विंदेश्वर द्विवेदी और इनकी माता का नाम था श्रीमती इंद्रसेन देवी। बचपन से ही मेजर चंद्रभूषण को देश सेवा का ये सपना देखा करते थे और सशस्त्र बलों के प्रति इनका बेहद लगाव था। यही कारण रहा कि 20 वर्ष की आयु में ये भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में इन्हें कमीशन मिला और ये शाखा भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली युद्धक शाखाओं में से एक मानी जाती है, जो अपनी निर्णायक मारक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में प्रभाव के लिए जानी जाती है।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता,

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, मेजर चंद्रभूषण ने गनर के रूप में अपनी सेवा शुरू की और उसके 18 वर्षों के बाद एक समर्पित सेवा के बाद एक अधिकारी बने, जहां अपनी नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने सब जगह पर संतुलन बनाया और एक समर्पित सेवाएं दी। कारगिल अभियान में 14 मई से लेकर 2 जुलाई तक इनकी निर्णायक भूमिका रही। चर्चा करेंगे इस गीत के बाद।

सैनिक साथियों, मेजर चंद्रभूषण ने द्रास सेक्टर में इस अभियान में निर्णायक और साहसी भूमिका निभाई। 14 मई 1999 को द्रास में भारी गोलीबारी चल रही थी। ऐसे में ये जवानों के साथ अपनी जगह पर डटे रहे और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की। इन्होंने अपनी असाधारण साहस और वीरता का परिचय दिया और इस तरह से ऐसे में जवाबी कार्रवाई के लिए बार बार फायरिंग के लिए तोपखानों की स्थिति बदलते रहते। जैसे जैसे अभियान तेज होते गए, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती। इनके लिए दुश्मन से बचाव और तोपखाने से गोलीबारी सुनियोजित करने की रणनीति तैयार की जाती रही।

सैनिक साथियों पर 2 जुलाई 1999 की शाम स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर रही और ऐसे में रेजिमेंट की तोपों से गोलीबारी जारी थी और निर्णय लेना भी बड़ा मुश्किल था कि क्या गोलीबारी जारी रखी जाए या सुबह तक विराम लिया जाए। पर ऐसे में मेजर चंद्रभूषण ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी तरह से ताकत के साथ गोलीबारी करने के लिए प्रेरित किया और उनका मानना था कि साथी सैनिकों की सुरक्षा अपनी सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में सैनिक साथियों गोलीबारी जारी थी और अचानक से एक दुश्मन का गोला उनके करीब बेहद आ फटा और विस्फोट से मेजर चंद्रभूषण बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हटने से इनकार कर दिया और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे और निर्देशित करते रहे, पर अंत में मेजर चंद्रभूषण देश के लिए शहीद हो गए। सैनिक साथियों, मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के साथ लांस हवलदार मल्लप्पा, नायक सरवन कुमार, नायक बिशुनी रॉय, लांस नायक पी गौगैया, गनर राजकुमार और गनर आई एन एस सिंघा भी, उन्होंने भी प्राणों की आहुति दी। मेजर द्विवेदी की असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता और सर्वोच्च बलिदान के लिए इन्हें मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया गया। मेजर चंद्रभूषण की निस्वार्थ त्याग और सच्ची देशभक्ति के लिए हम सलाम करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत सैनिकों के लिए 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए गांवों को जोड़ने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षति की जानकारी लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित परियोजना

0: को समयबद्ध रूप से पूरा करने की दिशा में आवास विभाग ने अपनी निगरानी और सख्त की। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने योजना की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के अंतर्गत पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। हरिद्वार जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहादराबाद में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का समापन। शिविर के अंतिम दिवस भारी बारिश के बावजूद 110 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चमोली जिले के गैरसैंण विकास खंड में लगभग 15 किलोमीटर लंबे खजूर खाल भंडारी खोड़ मोटर मार्ग निर्माण कार्य को पूरा कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया। क्षेत्र के लोगों को अब सुरक्षित, सुगम और सर्वकालिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 3:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल। फिल्म का नाम था थ्री इडियट्स। गीत था स्वानंद किरकिरे का और संगीत शांतनु मोहित्रा का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ है अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम एयरलिफ्ट।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: ये आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, फिल्म का नाम था शिकी टू, गीत और संगीत मिथुन का था। गाने नई तराने आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत हिमेश रेशमिया की आवाज़, फिल्म का नाम है अपनी, बोल हैं समीर की ओर धुन हिमेश रेशमिया की।
1: Let's rock to

बार बार देखो, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ें थी नीति मोहन, अरमान मलिक और साथियों की। गीत था कुमार का और संगीत अरमान मलिक का था। आइए आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की बोल प्रीतम का संगीत, आवाज़ मुस्तफ़ा जाहिद की, और फिल्म का नाम है आवारापन।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: समय 3:32 और 33 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे गाने नई तरह ने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये है अगला गीत, विशाल डडलानी और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम बागी 3। गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।
3: Authentic, original, and better than our rivals.

कुमार के शब्दों को संकेत दिया था राघव सज्जन ने। ये आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम था बिट्टू बोस। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत, मोहित चौहान की आवाज में, फिल्म का नाम बोल बच्चा।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: ये थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो, फिल्म का नाम था हम तुम। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीतकार थी जतिन ललित। श्रोताओं, इसी के साथ गाने नए तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम सुनिएगा स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज क्रम रहेगा चिट्ठी पत्रिका। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 सुनिएगा डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत, विषय रहेगा धान की रोपाई व जरूरी सावधानियां। रात्रि 8 स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आप सुन सकते हैं पद्मश्री डॉक्टर बी के संजय से रमेश चंद्रा की बातचीत, विषय रहेगा घुटना प्रत्यारोपण क्यों जरूरी। रात्रि 10 सूर्यगा प्रादेशिक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय शाम के 4 को हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक। देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारे और से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक बहुत बता जी।
0: तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और आपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ जीपीएस वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
0: जी।
1: इसमें। जी जी जी
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
0: जी।
1: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
0: जी
1: जी
0: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
1: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
0: अच्छा।
1: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक हैं वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन तो। इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
0: क्या बात है सर।
1: जी
0: तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बाला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: जी
1: एक, जी जी जी
0: तो
1: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त
0: जी
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
0: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या, मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें। जी लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या बात,
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको 2 बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए
1: जी। एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला,
0: गैलेंट्री

0: काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
1: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ। उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और सब
0: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा,
1: में ज्वाइन किया जी।
0: जी तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: भी एनडीएफ के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफ के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी,
1: इंडो भूटान।
0: तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी एनडीएबी का उससे,
0: अच्छा,
1: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे। हमारे बटालियन एसएससी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें, उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा, हाँ, तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी,
1: जनरल ड्यूटी जी, जी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी,
1: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है 4 साल का 5 साल का, ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
1: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग,
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन, हाँ, असम में आपने शुरुआत, अच्छा,
1: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत, अच्छा, हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन
0: गोसाईं जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
0: अच्छा,
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी, वो रोटेट होके आ गई,
0: अच्छा,
1: असम में आ गई हॉली में जी।
0: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्शुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
0: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
1: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, 50, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी
1: जी। हाँ, लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज को हम याद,
0: अच्छा,
1: करते हैं जी।
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी
0: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं
1: जी, क्योंकि इसे बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में
0: जी
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है,
0: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ,
0: इन्फॉर्मेशन
1: जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है
0: जी जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं,
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: जी,
1: तो
0: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
0: जी, जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली. सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ. शंकर लोध हैं फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से. जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम. आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर. यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है. तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशन के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए.
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं.
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये.
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें.
1: फोर्स से ही मैंने जी
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी. अच्छा. इसमें कैसे कैसे नक्सल से कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं अच्छा खाना है. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
0: ओके,
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. अच्छा, चलने से लेके हर चीज. और अच्छा, उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल अच्छा, से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जंगल.
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा.
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे.
1: इस टाइप के ड्रिल उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा.
1: हाँ,
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना?
1: जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा. यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं.
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा,
1: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो
1: हाँ
0: कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा,
1: अचानक अचानक सब चीज़ होता है। आप
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके, एक तरह से ड्रिल ड्रिल।
1: हाँ, ड्रिल ड्रिल। हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है। जी
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
1: अगर
0: जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
0: जी
1: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक
1: हाँ,
0: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
1: कमजोर
0: पूरी
1: पड़,
0: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी,
1: हाँ, तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
0: मोटिवेटेड
1: का।
0: रखने।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा ये टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप
0: जी
1: में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं
0: जी
1: भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
0: जी
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
0: जी
1: जी
0: आपके
1: जी
0: आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
0: अच्छा
1: पकड़ना है, जी उसके उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी
1: हाँ
0: कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है।
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
0: जी
1: उसके
0: जी
1: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: जी
0: सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मज़ा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
0: जी
1: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मज़ा
0: तो
1: आएगा।
0: आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया, मतलब?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए
0: अच्छा सर,
1: जी
0: यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
1: जी
0: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और
1: जी
0: ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद, और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश

0: उचित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज, ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स, आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के खास कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही मिनटों बाद यानी साया के 5:10 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे रोचक जानकारियों और खूबसूरत गीतों से सजा अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 5:45 पर होगा पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। श्रोताओं, किसान भाइयों के साथ आप सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जहां डॉक्टर संजय कुमार के साथ बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी। बातचीत का विषय होगा धान की रोपाई व जरूरी सावधानियां। समय सायं के 7:00। अपने मनपसंद फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सायं के 7:40 पर, रात्रि के 8:30 पर और रात्रि के 9:30 पर।

साय के 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा विशेष कार्यक्रम आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण। और श्रोताओ, रात्रि के 8 बजे स्वास्थ्य चर्चा में पद्मश्री डॉक्टर बीके एस संजय से बातचीत करेंगे रमेश चंद। विषय होगा घुटना प्रत्यारोपण क्यों जरूरी। रूना लैला के गाए हुए गीतों का आनंद आप लेंगे रात्रि के 8:15 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में, कार्यक्रम स्पॉटलाइट। जी हाँ, ये कार्यक्रम दिल्ली से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा रात्रि के 9:15 पर।

प्रादेशिक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। जी हाँ, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे और अपने मनपसंद फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर। अभी आपने सुनी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं। एक नज़र डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर। फिल्मी गीतों से भजन, जी हाँ, ये कार्यक्रम फिल्मी भजन आप सुन सकते हैं कल प्रातः 7:10 पर। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल सवेरे 8:30।

श्रोताओं, कल सवेरे 9:30 पर कार्यक्रम अनुभव में आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, जो आयुक्त हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय देहरादून से। उनसे बातचीत करेंगे रमेश चंद्रा। कार्यक्रम होगा अनुभव और समय कल सवेरे 9:30। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:10 होने को है और ये समय होता है हमारे युवा साथियों के मनपसंद दैनिक कार्यक्रम का। तो सुनते हैं युववाणी।

0: हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में. हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं शिवानी कंडवाल
1: और मैं आयुषी भट्ट. आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका गुरुवार की इस खुशनुमा शाम में दोस्तों दिल से स्वागत है.
0: उम्मीद है दोस्तों आपका दिन शानदार रहा होगा. और अब वक्त है कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने और अपने सपनों को नई उड़ान देने का.
1: बिल्कुल, कहते हैं खेल सिर्फ मैदान में नहीं जीते जाते, उनकी कहानियां भी दुनिया तक पहुंचाई जाती हैं और उन कहानियों को आवाज देते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट.
0: तो दोस्तों, अगर आपको खेल देखना पसंद है, खिलाड़ियों की कहानियां जानना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आपका करियर भी खेलों की दुनिया से जुड़ा हो, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार और रोमांचक करियर विकल्प हो सकता है.
1: बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है कि इस क्षेत्र में आखिर शुरुआत कैसे करें?
0: बिल्कुल. तो दोस्तों, 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास करने के बाद आप BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BA इन जर्नलिज्म या फिर स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं.
1: और इस फील्ड में सिर्फ अच्छी पढ़ाई नहीं बल्कि खेल अधिकारियों, कोचों और खिलाड़ियों के साथ अच्छे संपर्क होना भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों. यही नेटवर्किंग आपको नए अवसर दिलाने और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होगी.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही कॉलेज के समय से ही किसी लोकल न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स वेबसाइट या न्यूज़ चैनल में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. इससे आपको न्यूज़ रूम के कामकाज को समझने में भी बहुत ही अनुभव मिलेगा.
1: साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का बेहतरीन अनुभव भी इससे आपको मिलता है, जो आगे चलकर आपके करियर में काफ़ी मददगार साबित होता है.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कई शानदार अवसर भी मौजूद है दोस्तों.
0: सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर की. तो दोस्तों, स्पोर्ट्स रिपोर्टर का काम होता है मैदान से मैच की लाइव रिपोर्टिंग करना, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ लेना और खेल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाना.
1: और इसके बाद आता है स्पोर्ट्स एंकर. स्पोर्ट्स एंकर टीवी स्टूडियो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स शो होस्ट करते हैं, मैचों को एनालाइज करते हैं और खेल जगत की हर बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू कराते हैं.
0: और दोस्तों, अगर आपको लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटर या एडिटर के रूप में भी बेहतरीन अवसर है. इस भूमिका में अखबारों और वेबसाइट्स के लिए खेलों से जुड़े एनालिसिस, फीचर लेख और रोचक खबरें भी लिखी जाती हैं.
1: और आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया मैनेजर की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है दोस्तों.
0: बिल्कुल. इनका काम खेल लीग, टीमों या खिलाड़ियों के लिए अट्रैक्टिव डिजिटल कंटेंट तैयार करना है और सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस तक पहुंचाना है.
1: अब बात करें इस क्षेत्र में आय और करियर ग्रोथ की, तो अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अपने करियर की शुरुआत एक ट्रेनी या रिपोर्टर के रूप में करते हैं तो शुरुआती दौर में आपको लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह तक का वेतन मिल सकता है दोस्तों.
0: और दोस्तों, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी मेहनत रंग लाती है और इस क्षेत्र में आपकी पहचान बनती है, वैसे वैसे आपकी आय भी बढ़ती जाती है और ये लाखों रुपए प्रति माह तक पहुंच सकते हैं.
1: तो साथियों, अगर खेल आपका जुनून है और पत्रकारिता आपका सपना, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प साबित हो सकता है.
0: सही तैयारी, लगातार सीखने की इच्छा और पूरी लगन के साथ की गई मेहनत आपको इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है. और आइए, इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारा पहला म्यूजिकल ट्रैक, नीलांजना घोष और वेदान रैना की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊँगा. आइए सुनते हैं.

0: योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
4: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
3: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
4: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
3: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
4: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, आज है गुरुवार और हर गुरुवार हमारे कार्यक्रम में शामिल होता है एक खास सेगमेंट जिसका नाम है रोजगार समाचार। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले रोजगार समाचार से।
5: बिल्कुल दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अभियंत्री आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 8 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर आप विजिट कर सकते हैं।
0: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 300 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए आपसे आपके पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री तथा नेट सेट या PhD जैसी निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। इसमें आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप hppsc.hp.gov.in पर जा सकते हैं।
5: अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के साथ करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, जो कि है rbi.org.in।
0: नीति आयोग के फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत सीनियर लीड, सीनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर एसोसिएटिव सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए स्नातक, BTech, MBA तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव आवश्यक है दोस्तों। आयु सीमा पदानुसार 26 से 52 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए आप niti.gov.in पर जा सकते हैं।
5: दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6,715 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा रहने वाली है 20 से 30 वर्ष के बीच और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है दोस्तों 21 जुलाई 2026। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है ibps.in।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ रोजगार समाचार का आज का ये विशेष सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत सा बॉलीवुड गीत जिसे लिया गया है फिल्म

0: दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी के परिवार में किसी को अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो इलाज का खर्चा लाखों रुपए तक पहुंच सकता है, क्यों, है ना शिवानी?
1: हाँ बिल्कुल, और ऐसे समय में कई परिवार दोस्तों आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन अगर इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए तो ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं है ना।
0: बिल्कुल, और इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार लेकर आई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे ABPMJ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
1: दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य गरीब, वंचित परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है।
0: दोस्तों इस योजना को की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे पहली बात, पात्र परिवारों को सूचीबद्ध यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शरी स्तर के इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।
1: और दूसरी खास बात दोस्तों, ये सुविधा पूरी तरह से कैशलेस है, यानी लिस्टेड हॉस्पिटल्स में इलाज के दौरान मरीज को अपनी जेब से पैसे खर्च करने बिल्कुल नहीं पड़ते।
0: इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय की परवाह किए बिना हर पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का अलग मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है।
1: और दोस्तों इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सुविधा ये भी है कि अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक की जो भी जांच होती है, दवाइयों का खर्चा होता है, इलाज का जो भी खर्चा होता है, वो सब भी इसी योजना में शामिल रहता है।
0: बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है शिवानी कि आखिर में इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?
1: तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर, आदिम जनजाति समूह तथा ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई एडल्ट मेंबर नहीं है, वो इसके पात्र हैं।
0: वहीं शहरी क्षेत्रों में 11 लिस्टेड बिजनेसेस से जुड़े परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार और 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी ऑटोमेटिकली इसके पात्र बन जाते हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल दोस्तों, बात करें आयुष्मान कार्ड बनवाने की, तो यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक PMJAY पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर जाकर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और कार्ड बनवा सकते हैं।
0: वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC या आयुष्मान मित्र की मदद से अपना नाम जांचें और कार्ड बनवाएं दोस्तों।
1: और यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए दोस्तों, तो इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, वो है 14555।
0: तो प्यारे दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है तो देर ना करें और जल्द से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। ये एक छोटी सी पहल भविष्य के बड़े इलाज के खर्चे से आपको बचा सकती है।
1: और हाँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला म्यूजिकल ट्रैक, मोहित चौहान की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी दिल तो बच्चा है जी, आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, कहा जाता है कि जब ज्ञान और मेहनत साथ चलें तभी विकास की फसल लहलहाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे उत्तराखंड की खेती को नई तकनीक और नई सोच देने के पीछे किन संस्थानों की भूमिका है?
1: बिल्कुल दोस्तों, खेतों में होने वाली हर नई पहल के पीछे वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और शिक्षण संस्थानों की वर्षों की मेहनत होती है। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड के ऐसे ही कुछ प्रमुख कृषि संस्थानों के बारे में।
0: दोस्तों, जब कृषि, शिक्षा और अनुसंधान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का। ये देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ आधुनिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी और नई कृषि तकनीकों पर निरंतर शोध किया जाता है दोस्तों।
1: और यही शोध किसानों तक भी पहुंचता है, जिससे उनकी खेती अधिक वैज्ञानिक और लाभदायक बनती है।
0: पर्वतीय क्षेत्रों की खेती की बात करें तो इसको नई दिशा देने में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भरसार की अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों। यहाँ फल, सब्जियाँ, मसाले, औषधीय पौधे और वानिकी से जुड़े विषयों पर विशेष अनुसंधान किए जाते हैं।
1: यानी पहाड़ की जलवायु और ज़रूरतों के अनुसार दोस्तों खेती के बेहतर विकल्प विकसित किए जाते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को सीधे लाभ मिल पाता है।
0: इसके अलावा उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में स्थिर कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK किसानों तक नई तकनीक, उन्नत बीज, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें खेत और प्रयोगशाला के बीच एक मजबूत सेतु कहा जाए तो गलत नहीं होगा दोस्तों।
1: बिल्कुल। और देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान, यानी कि दोस्तों हमारा FRI भी कृषि वानिकी, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर

0: तर उपयोग पर महत्वपूर्ण शोध कर रहा है जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है।
1: और आज कृषि केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है दोस्तों, शिक्षा, अनुसंधान, एग्री स्टार्टअप, जैविक खेती और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए भी अनेक नए अवसर उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, जब शिक्षा, अनुसंधान और किसानों का अनुभव साथ आते हैं दोस्तों, तभी खेती आत्मनिर्भर और समृद्ध बनती है। क्यों आयुषी?
1: बिल्कुल,
0: उम्मीद है कि उत्तराखंड के ये संस्थान आने वाले समय में भी कृषि के विकास की एक नई जो मिसाल है दोस्तों, वो कायम करते रहेंगे।
1: दोस्तों उम्मीदें यूं ही जिंदा रहे, मुस्कुराटे यूं ही बनी रहे, इसी दुआ के साथ अब रुक करते हैं संगीत की ओर और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मर्डर 3 से, जिसे आवाज़ दी है प्रीतम और सईद कादरी ने।

0: दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपने विचार या सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून। दोस्तों, हमारा पिन कोड है 248001।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। और इसके अलावा दोस्तों, अब आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपने संदेश मैसेजेस हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। बहुत ही इजीएस्ट वे है ये,
0: बिल्कुल
1: जिससे कि हम आपके जो भी विचार हैं और आपके जो मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंच जाते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7088000731। एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, 7088000731। आपके संदेशों और सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी शिवानी कंडवाल,
0: और मुझे यानी आयुष को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में साया के 5:45 हो गए हैं। अब प्रस्तुत है परवंती अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम का सभी सुनदर होता है आपका दगड़िया जयप्रकाश पंवार की तरफ बटिंड सेवा सौली नमस्कार। अब बोला जिन भाई के बस गाल की शुरुआत हुई कि बल ब्याली बटिन बरखा लगी च। आज सुबेर भी बरखा हुए और अब आर चटकताल और घाम भी लगी च। कभी गर्मी कभी ठंडू कभी बरसात, पर मौसम जो च काफ़ी सुंदर हुएगी और लोग बरखा को आनंद लेना छन जगह जगह। पर बाटा घाटा भी टूटना छन। सिरो बगड़ में ब्याली भारी मलबा आने से 3-4 घंटा रास्ता बंद रहे। तो बरसात का मौसम में कोशिश करला कि जब ज़्यादा ही जरूरी हो तभी यात्रा करना। निथर अपना घर गाँव में रवा आजकल रोपनी भी होनी छिन। काम काज तो कभी भी बंद नहीं होना। बकरा भी चलानी छ, गोरु भी जंगल पैटानी छिन और घास भी लियानी छ। काम धानी तो कभी नहीं थक दी वाला है। पर जमानो भी बदलणो छ। नई पीढ़ी अब खेती किसानी का बजाय पढ़िया लिखिया नौकरी का तरफ भगना छिन और ज़्यादा झुकाव जो छ सुविधा वाली नौकरी ते पसंद करना छिन। अब बोले भी के जो जे गाँव बटे न जितना जल्दी लोग पढ़ी लिखिन ऊन पहली गाँव छोड़ाइल छो और ऊँ की नई पीढ़ी ते पता भी नहीं छ कि ऊँ गाँव कख छ, पुंगड़ा पढ़ला कख छिन और ऊँगा अता पता यानी गाँव के बारे में छे ही नहीं पता। कोशिश जरूर करला कि बच्चों ते भी अपना गांव घुमाए जाओ, उते भी जड़ों से जुड़ने को प्रयास करे जाओ। अपनी बोली भाषा संस्कृति समाज व अपना गांव का इतिहास का बारे में भी हर परिवार जरूर कोशिश करला। तो जब थोड़ा थोड़ा ये प्रयास जारी रहला तो कुछ आशा बनी रही। बदलाव समय के साथ जरूरी छ और जख पहली नौना नौनी का ब्योग अवस्था जाति बिरादरी की बात करता सा अब वो भी टूट गए। अब जाति पाति का बजाय लड़का लड़की की पसंद, आपसी सामंजस्य, नौकरी चाकरी को मिलान होने लगी और पूरा समाज में यू बदलाव पिछला 2 दशकों से देखना तो मिलनो चु। खैर छुई बत अंगने भी करला आज का कार्यक्रम का बाबत बतौला। आज बृहस्पतिवार छ और आज को दिन होंदू आपकी भेजी चिट्ठी हो तो कुछ देर में चिट्ठी बाँचने को कार्यक्रम भी छ आज और घड़ेक में प्रस्तुत कल हुए कार्यक्रम तय। फिलहाल आज का कार्यक्रम की शुरुआत कर दा दीपा चौहान का गया ये वर्षा गीत से।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
4: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
3: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
4: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
3: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर
4: या कॉल करें 73

0: 8662633922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दगड़ियों अभी आप सुनना चाह कुछ रंत रह बार और वैसे पहले आपन सुनी दीपा चौहान का स्वरमा सुंदर सी गढ़वाली गीत और जन की कार्यक्रम का बाबत हम बताना चाहे कि आज चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ची जैमा के हम पूरा सप्ताह भर की जिते भी आप लोग चिट्ठी भेज दन लिख दन ऊँ तय हम बाँचना चिन्ह आज तो ले चलता आप ते आज का चिट्ठी पत्री कार्यक्रम की तरफ।

0: चिट्ठी पत्रिका आज का अंक मा सभी सुनदारों को बहुत बहुत स्वागत। मिछू विनय ध्यानी और म्यार दगड़।
1: मिछू आपको दगड़िया जयप्रकाश पवार।
0: आज ये अंक मा हम अपना बेबंदों की चिट्ठी पत्रियों का लेके उपस्थित हुआ यहाँ खातिर कि साहब कोई शिकायत होली, कोई सुझाव होला, चिट्ठी में कुछ अपनी बात लिखी होली है ना, तो हम सार लगे छो कि भाई कक अकबर का होनी कक नहीं होनी कुछ हमारा चिट्ठी पत्रियों में हमता है जनक सुनक मिलल।
1: बिल्कुल,
0: तो ईमेल पर भी चिट्ठी छेचन और बाकी हतक लिखी चिट्ठी भी।
1: बिल्कुल, ये तो जमानों की बात होगी दादा के जो चिट्ठी लिखा लोग बिसर गए, लेकिन आज भी हमारा ये न श्रोता छिन्न जो बहुत दूर दराज गाँव बिटिन हमते चिट्ठी पैटौना छिन्न, ये न एक चिट्ठी आज भेजी च राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा जी ग्राम पोस्ट ऑफिस धौतरी उत्तरकाशी बिटिन।
0: अरे वाह, दूर बटाणी चिट्ठी हाँ। और खास बात क्या छे कि लिफाफा पा पुटुक
1: हाँ।
0: और बिल्कुल रजिस्टर्ड डाक जो बोल देन
1: हाँ,
0: हम तो ही बोलला कि आप साधारण डाक से भी भेजला ना तो हम तक पहुंच जाल जरा पैसा बच जाला आप
1: जी अगर, जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन अच्छी लगी कि आज भी हतक लिखी चिट्ठी को इन बोले जा कि ये जमन में जबकि लोग लगदा नहीं छन आप हम तो चिट्ठी लिखना छन पहले तो यहाँ खातिर आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब चिट्ठी
1: बिल्कुल लिखना छिन ध्यानी जी की सभी आकाशवाणी का जो जितना भी उद्घोषक छिन आप सबते बल मेरी तरफ बिटिन प्रणाम। और अपना बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सभी जो छिन प्रशंसा योग्य छिन।
0: अच्छा,
1: कार्यक्रम बहुत सुंदर पेश करदन, खासकर विनय ध्यानी जी, अनिल भारती जी, जयप्रकाश पवार, मनोज भट्ट, रुचि रावत, वीरेंद्र गैरोला, शांति बिंजोला, गीता भंडारी, आसना कंडियाल नेगी, सरिता भट्ट, मीना उनियाल, रमन रावत, ममता बडोला, सविता बर्थवाल आदि सभी की प्रस्तुति बेहतर रंदी बल
0: कुजान कुछ उठोल
1: ना ना हाँ या हम बताऊँ चुकी देखा था कितना गंभीरता से वो हमारे कार्यक्रम तक सुन दन। अगर नहीं लिखना चाहिए कि मैं आपको बहुत पुराना श्रोता छू जब लखनऊ से उत्तरायण को प्रसारण होने छो और बाद में नजीमाबाद से प्रसारण हुए, लेकिन गढ़वाली गीतों का वास्ता समय हमेशा कम रोंदो, जबकि अब हमारो अपनो आकाशवाणी केंद्र च विनय ध्यानी जी अनुभवी उद्घोषक और सुंदर आवाज च आप सभी उद्घोषकों ते बहुत बहुत बधाई। और अब एफएम पर प्रसारण साफ सुंदर सुने जानू च।
0: अच्छा।
1: पहले तो आसमान खराब होने पर रेडियो जो चिड़चिड़ कर छो बल और आवाज साफ नहीं होनी चाहिए, अब नई तकनीकों को धन्यवाद रेडियो जीर्ण को सारा च ज्ञान जानकारी मनोरंजन को केंद्र च
0: सगत चिट्ठी कनबल हम दो एक ही बात
1: बिल्कुल
0: तो पन्ना बाद में फरकाओ तो तब भी कह लो ना
1: जी, जी,
0: पहला जवाब
1: जी, जी।
0: एक तो सभी का खातिर आपन जो तारीफ लिखी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और खैर वाकई चिड़चिड़ाट को जमन चल गया अब बिल्कुल टकाटक रेडियो पर आप साफ साफ हम तक सुन सकते न। और इतना ही ना बल्कि अब आप बहुत से माध्यमों से रेडियो तो पुरानी बात हो गया अब आप मोबाइल ऐप का माध्यम से हम तक सुन सकते हैं अपन गाड़ियों में चल दब हम तो सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: आपक एक बात लिखी कि साहब ज्यादा से ज्यादा गीत संगीत होने चाहिए हमारे उत्तराखंड को तो बिल्कुल छेंचे इन बात नीचे अगर हम प्रतिशत का हिसाब से देखा ना तो जो हमारे एक इन बोले जान की एक विधि विधान से हमारे एक नियोजन भी होंद कि कई कार्यक्रम था कितना प्रतिशत रखे जा
1: जी।
0: संगीत को अलग होंद उच्चारित शब्द जो हम बोलदा अलग होंद हिंदी अलग छ कृषि जगत अलग छ बाल मंडल अलग छ बहुत सारा कार्यक्रम छन तो वे माँ एक अनुपात का साथ ही हम तय अपन प्रसारण रखना और ये माँ हम बहुत कुछ ज़्यादा घटबड़ नहीं कर सकता। हाँ जो आपक सुझाव छ वे पर हम पहली बिट काम करना चाहूँ अगर शैल संगीत छ तो शैल संगीत में भी गढ़वेल कुमाऊनी गीत आना छन प्रादेशिक संगीत को कार्यक्रम छ तो वे माँ भी गढ़वेल कुमाऊनी जन सारी लोकगीत आना छन। एक अलावा रोज टक लगाए हम अपन ग्राम जगत कार्यक्रम में यूं गीतों को प्रसारण करता गिरिगुंजन कार्यक्रम हर महीना को दूसरे मंगलवार दिन आप तक हम पहुंचाना छुआ अब और कद का चढ़ो आपते
1: बिल्कुल। और चिट्ठी आज भी बहुत स्वागत से और भी जवाब देना पड़ा ध्यान आपते बुना छिन की महत्वपूर्ण सुझाव लिखनो छु जय पर आप लोग जरूर अमल कर रहा ग्राम जगत कार्यक्रम में समाचारों ते अलग से करे जो बल गिरिगुंजन कार्यक्रम ते नियमित करे जो और दिन में गढ़वाल गीतों को प्रसारण करने की कृपा करला माधुरी बर्थवाल का जमाना में धरोहर नाम को कार्यक्रम होने छो वे ते फिर से शुरू करे जय सकदू सुबेर मु भक्ति संगीत में कै भी कलाकार का एक गढ़वाल जाकर जरूर शामिल करला हेलो ग्राम जगत गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी गीतों को बल शुरुआत करने की भी जरूरत छ नरेंद्र सिंह नेगी जी का साथ विनय ध्यानी जी प्रेम कुमार सडाना की भेंटवार्ता हिंदी में बल वे प्रसारण करेंगे पुराना गीतों को कार्यक्रम बल याद आएगी।
0: अच्छा
1: लोक संगीत में गुजराती हिमाचली रागिनी भोजपुरी रोहिलखंडी हरियाणवी तय बल वे भी प्रसारण बल जरा कम करा बल हमारे उत्तराखंड को ज्यादा करा बल लिखना चाहिए। हेलो फरमाइश का प्रसारण सप्ताह में दुई बार करे जाओ कार्यक्रम विवरण लिखने वाला साहब यू ध्यान रखून कि कै कलाकार को गीत कब से कार्यक्रम में निबजी
0: अरे वाह
1: खासकर गढ़वाली गीतों को ध्यान रखना जरूरी छे। यू पुराना कलाकारों तय आप लोगों भूले दी नहीं बल राम रतन काला बेणी माधव रतुड़ी शिव प्रसाद पोखरियाल राधा रावत सुलोचना रावत गंभीर दरमीज बुंदीलाल विश्वकर्मा ओम प्रकाश बधाणी विजय सैलानी भाषा पंत रतन सिंह जौनसारी पातिराम नौटियाल धर्म सिंह राणा आसाराम भट्ट बांकीलाल नथीलाल नौटियाल भगत राम दीवान सिंह कनवाल कपूत्री देवी शेर सिंह मिस्त्री महेंद्र चौहान सरिता देवी भागीरथी देवी माधुरी बर्तवाल भानुराम सुकोटी बहुत सारा छन। सैल संगीत में आप बारी बारी से यूं कलाकारों का गीत बजाने की महान कृपा कर लबल बहुत बहुत धन्यवाद बना चाहिए।
0: वाह साहब वाह कोई आपन कलाकार नहीं छोड़ी कोई आपन प्रस्तुतकर्ता नहीं छोड़ी या मतलब आप हमारा वाह कई बहुत पुराना श्रोता छन चाहे उत्तरायण की बात करे जाए चाहे आकाशवाणी नजीवाद की बात करे जाए और अब आप बात करना छन आकाशवाणी देहरादून के
1: जी।
0: तो यूं मध्य कते नौ इना छन कि जो हम अपन ये कार्यक्रम में जो हमारे शैल संगीत है वे में भी प्रसारित होना रहे दिन लेकिन हमारे खास कोशिश यह रहे कि चिट्ठी पत्रिका अंक में हम एक पुराण गीत आप तक सुनोला और आज ये आपकी इच्छा तो पूरी कर देना रतन सिंह जौनसारी जी की इन बोले जाएंगे कि जौनसार क्षेत्र को संगीत का प्रतिनिधि का तौर पर आकाशवाणी में शुरुआत करी जो उनको गीत एक हम आज आप तक सुनोला। ये के अलावा जितना भी हो नौ लेके आचन यूं का सभी का गीत हम कार्यक्रमों में शामिल करना रहे
1: जी जरूर
0: आप होना चन की भरपूर तौर पर यूं थे शामिल करे जात भाई सभी का गीत मिजा कखी नीच अपार विजय सैलाने तो पर से आया चाहे नए गीत भी गाय गिनू तो देखा ये हमारे कोशिश छे च लेकिन हाँ हम आपक भावना था समझना चाहूँगा कि जो पुराना कलाकार छन का कि हम उत बिसर नहीं जाऊँगा बिल्कुल ना जन आपने बिसरा ना तने हम भी नहीं बिसरा और हम कोशिश कर दें कि आपक खातिर पुराना से पुराना गीत हम लेख हुआ जो सुझाव छन बहुत ही शानदार सुझाव छन लेकिन बाकी और जो संबंधित विभाग छन उनका खातिर भी छन वक्त तक भी हम आपक चिट्ठी जरूर पहुँचौला कि भाई इन बोरा छन समाचारों को जो फेर बदल छो हमारे समाचार अनुभाग को काम छ और वही कर द और यह कोशिश अमल के लेकिन किला कि एकदा जो समाचार जब जय भगत पर शुरू हो जान वो इतना ठसकान थोड़ा मुश्किल हो जान दोपहर में गढ़वाल गीतों को प्रसारण करने की कृपा करें भाई एक दिन गारंटी तो हमारे से
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है वो हम प्रसारित करना और बाकी दिन भी कहबत हुई जान एक सुझाव जो आपक छो वो बढ़िया छे संगीत अनुभाग तक आपक ये सुझाव था हम भेजना छो कि जो भक्ति संगीत को कार्यक्रम वंदना हो ना सुबेर वे में बल के कलाकार को एक जागर आप जरूर रखें अच्छा सुझाव
1: बहुत अच्छा सुझाव
0: है ना। तो ये सुझाव हम आपको संगीत अनुभाग तक भेजना चाहूँ। हेलो ग्राम जगत शुरुआत करने की कृपा कर ला बल आप बोला कृपा और हम बोला कोशिश कर ला
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: लेकिन चटचटाक कुछ ना कुछ करना चाहूँ हम तजबीजे में और जो बातचीत हिंदी में हमन कभी नेगी जी की दगड़कार छा और गढ़वल में भी कार बल के हमन लेकिन ये बात बताऊला आपने कि साहब उस जमानक बात अलग हो गया आप जनरल चिन्ह की नई तकनीक का दगड़ हमन सब कुछ नई कार कंप्यूटर आ गया तो जो पुराना टेप छा ना वो या तो चिपक गिन बिलक गिन जो गुणवत्ता छ वो खराब हो गए और कुछ था हमन ढो दे दिया पुन छोड़ अमल वर्ण दिया और बहुत सा गीत ना चाह जो था हमन कंप्यूटर में वे को स्थानांतरण कार
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन किला की खजान बहुत बड़ू
1: छो
0: और गुणवत्ता वे बगत तक अलग छा वो जो है मशीन हुई छा वो पर टेप चल रहा छा लेकिन धीरे धीरे जब पड़ा रहे नो तो चिपक गए नो
1: तकनीक भी बदल गई
0: तकनीक भी बदल गया अब वे तो हमन कन के बजाना जब तक वे तो हमन कंप्यूटर में
1: डल बिल्कुल
0: तो एक मजर इस खेरी हम तो आनी च और वह खेरी अब क्या आन अब तो कुछ हो नहीं और आप लिखना चाहें गुजराती हिमाचली या भोजपुरी यूं गीतों तो बल कम करो तो ये बाबत भी हम संगीत अनुभाग तक आपक बात पहुंचाना चाहूँ। हेलो फरमाइश को जो प्रसारण छो बल सप्ताह में दुई डाक कर दो चला ये बात भी हम पहुंचा दियोला हम तो डाकवान बन गए
1: डाकवान बन गया चिट्ठी में सगत आई थी ना
0: जी एक चिट्ठी में मिजा पांच चिट्ठियों वजन हो गया आज तो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो नियमित श्रोता छन राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा जी, धोत्री उत्तरकाशी बुटिकापन ये चिट्ठी हम तक पहुँचाए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ध्यानी जी एक और चिट्ठी आई जी वी के एस कार्की जी, सीनियर सिटीजन लिखना छिन्न, मतलब मैं नियमित श्रोता छूँ देहरादून ब्रिटेन डिफेंस कॉलोनी, नमस्कार बना छिन्न। और 26 जून तबल कोटगांव मोरी ब्लॉक पर जो स्थल रिपोर्टिंग वे बोले बहुत बढ़िया लगी।
0: अच्छा।
1: और 30 जून तय शिक्षा नीति पर चर्चा भी अच्छी लगी। और सभी प्रस्तुतकर्ताओं तय वाले बहुत बहुत आशीर्वाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्की जी, आप हमारा नियमित श्रोता ही ना बल्कि नियमित लिखवार भी बन गए ना। आप तय कोटगांव की जो ग्राम झांकी छे पसंद आए, ये का खातिर बहुत बहुत आभार। हमें तो दूर जाए अच्छा है, कैरी के लिए हुआ, बुएगी के लिए हुआ, सैकी के लिए हुआ, और आपन वे पर खट्टा अपन मुँह लगा दे कि हाँ रे भल छा, तो बस हम तो नए उत्साह का दगड़े फिर नए गौजो लगे दिन।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत आभार।
1: एक है कि चिट्ठिया जी ध्यानी जी, विकास सकलानी D395 प्रहलादपुर दिल्ली बिटिन भाई।
0: और गौ ची का भारियो बिजला बदलपुर।
1: हाँ बदलपुर बिटिन गाँव लिखना छ कि सभी ग्राम जगत परिवार तबल नमस्कार सेमस सोली। और विशेषकर महेंद्र प्रसाद ध्यानी जी का काव्य पाठ वाल बहुत अच्छा लगी, बहुत प्यारो छ। ध्यानी जी ऐसा लिखना छ कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटगांव उत्तरकाशी बल किलकारी भी बहुत अच्छी लगी।
0: अरे वाह।
1: और जौन सार का रीति रिवाजों पर सीताराम तोमर जी की जो वार्ता छे वाल भेंट वार्ता छे वो बहुत अच्छी लगी, शानदार रहे। जौन सारी की अपनी अलग संस्कृति छी और हम अपनी संस्कृति की रखवाल करना चाह वाली बहुत अच्छी लगी। अंगने लिखना चिन्ह की सोमेश्वर की जो गाथा छे वो गाथा भी बहुत अच्छी लगी, मतलब सोमेश्वर का बारे में जानने को मौका मिले। और जो भी आप लोग ग्राम जगत में भैर बिटिन जो रिपोर्ट करी ते लेना नु वे को बल बहुत महत्व छे।
0: बिल्कुल, हमारा जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम छे ये शानदार छे और लोग यूं पसंद कर देन। ये बात आज बिटे ना पिछला 3-4 दशक बिटे की यू काम चलनु छे। जब जब हम भैर गवा लोगों का बीच में गवा तो उन आकाशवाणी था उतना ही प्यार दिया, और जब वो प्रसारण हुए ना तो वे की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जान कि लगे हम महसूस करना वे गाँव थे वका का लोकू थे वका का जीवन थे वका की संस्कृति थे, तो वो बात हमते अपन कार्यक्रम में शामिल करने में बड़ू आनंद आन, हमते भी उतना ही आनंद आप थे सुनने में भी आन। बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप थे ये सभी कार्यक्रम पसंद आई। जौनसार की बात हमन सीताराम तोमर जी की दगड़ करी, वका की जो प्रथाएं छिन वका की जो लोक परंपराएं छिन उन पर हमन बात करी और लोग उतर जानकारी मिल जान, ये से बहुत बहुत आभार चिट्ठी का बाना। और सदन आपक चिट्ठी सकलाने जी आने रेंदे हम तो बहुत सुंदर लगत। थैंक चिट्ठी।
1: एक और चिट्ठी भेजना छिन मनोरमा रावत विजय पार्क देहरादून बिटिन, लिखना छिन कि ग्राम जगत के कुटुम्बदारी तबल हमारी तरफ बिटिन सेवा सौली। और ये हफ्ता बस ग्याल का स्वागत का दगड़ा बल उत्तरकाशी का पर्यटक गांव की मनोरंजक झांकी पेटोन वालों तबल बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छु लगी। उत्तराखंड में लघु व कुटीर उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा आसावान है। देहरादून में आकाशवाणी का 9 वर्षीय संघर्षमय सफलता जो उपलब्धि हासिल करे बल सफरनामा वो बहुत अच्छी लगी। और विशेष बधाई छे 29 जून स्थापना दिवस एक विशेष दिवस मलासी जी की कविता स्वर्ण भादो खूब अच्छी लगी।
0: अच्छा।
1: शिक्षा व्यवस्था पर अनेक लोगों ने विचार व अनुभव सुनी की अच्छी लगी। बोलखे पार्टी से AI तक को समय काल देखी, उनियाल जी की शेरों की रोपणी सुनी की तो स्वर्ग दीदा की जुगड़ी पसी गए, छक्की बर्ख हुएगी। और अंत में सभियों का साथ विशेष धन्यवाद चौहान जी को जो मेरी गढ़वाल में लिखी चिट्ठी तय बखूबी बचे निवल पिछली बार जुगराज रहे हैं।
0: हाँ भाई, जोन सारी माँ जो भाषा छे ना वो सुंदर पेड़ दे उन और के बाद रलाए मिसाए के सब कर दे।
1: वी तो अब आर दूंगा चिट्ठी मेरी पड़ी है तो आप देखो दो मैं अगली बार चिट्ठी बाकी मेरे नाम लिख दे जन कि नहीं लिख दे
0: ना तो आपन तो ठीक छे ना पेड़ दिन बड़ल में लिखे।
1: बिल्कुल
0: भाई, समस्या तो भाई साहब एक दगड़ छा चौहान जी दगड़।
1: अच्छा,
0: क्यों करें तो करें क्या तो यहाँ खातिर चिट्ठी में भी रसियाण आ गया और आप था भी सुंदर लगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे सभी कार्यक्रम पसंद है हमारा, परिचर्चा से लेके कविता पाठ और शिक्षा नीति पर जो हमन परिचर्चा रखी और गांव की झांकी जो हमन मोरी उत्तरकाशी को जो गांव छा कोट गांव वक झांकी आप तक पहुँचाया, आप तक पसंद आई, ये का खातिर बहुत बहुत आभार। और सदन आपक जो प्रतिक्रिया हम तय आपक ही अपन अंदाज में लिखी रहन वो बहुत सुंदर लग दिन हमें बहुत बहुत आभार। बस ये तरीके से ही अमर दगुड़ निभाण आ रहा तो आकाशवाणी को देहरादून को जो 9 साल को सफर छ एक तरफ 90 साल और एक तरफ 9 साल तो वे दिन हम चर्चा कर 29 तारीख में बहुत बढ़िया गिच बुटे निकलना रहे हूँ सरा हमार जो संघर्ष छ हमार जो विकास की यात्रा छ वो हमने सब शामिल करी तो ये सफर में सबसे बड़ी बात आप छन हमार दगड़ और हमारा असंख्य श्रोता जब हमार दगड़ जुड़दा छन भल लग देखा आज हतक लिखी चिट्ठी आया तो हम बिना खोले रहे सुबेर बुटे की कि आज पढ़ने से चिट्ठी तो बहुत बहुत आभार मनोरमा जी सदन हम तो सुनना रहे और हम तो अड़ाना भी रहे हाँ कहीं कोई कमी होली तो जरूर आपके आलोचनाओं को भी हम स्वागत कला
1: है कि चिट्ठी आई जी ध्यानी जी आचार्य इंद्रमणि थपलियाल ग्राम डाकखाना पोस्ट ऑफिस प्रेमनगर अम्बीवाला देहरादून बिटेन लिखना छिन
0: जी
1: कि ग्राम जगत कुटुंबदारी तेबल मेरे तरफ से नमस्कार और दिनांक 14/5/2026 की रजिस्ट्री मिन भेज है बल पोस्ट ऑफिस बिटेन क्या वह आप तय रजिस्ट्री प्राप्त हुएगी कि नहीं वेबल
0: द हम तो प्राप्त हुए आप था भी दे लगे हमने आप था न्यूत भी ब्याज लेकिन आप आए नहीं चिंता हमन कौन क्या चे हैं और आप पूछना चिन आप इधर दिन बाद जबकि हमने आप था दे भी लगा आपसे बातचीत भी हुए आपका टेलीफोन नंबर पर और आप था हमन सादर आमंत्रण दियो चाहे वो रचना का पाठ का खातिर लेकिन भाई आप आए नहीं चिन तो क्या करे चाह है तो दे तो सुन नहीं चिन अपन लेकिन हम फिर भी कोई बात नहीं चाहिए कुंभ थोड़ा हुआ ना जो 12 साल में
1: बिल्कुल दोबारा भी आप तय आमंत्रित कर ला जरूर
0: जी लेकिन थोड़ा आप तय भी गंभीर होन वालू कि लेकिन अगर कोई भी आमंत्रण सरकार छोड़ बिटे की भारत सरकार छोड़ बिटे आप तय जानू चु तो वही तय देखूं चु आप तय ईमेल जयू होलो आपन ईमेल खोली होलो और नी भी खोली होलो तो हमन तो आप तय रविवार भी पेटे कि बारे वे दिन आ जाए वे दिन रिकॉर्डिंग च
1: बिल्कुल
0: तो आप एनिशन साहब हमारे छोड़ बटे कोई कमी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है भविष्य में आप तो फिर दोबारा से आमंत्रित कर ला। धन्यवाद सभी भैबंदों को जो नाम तय चिट्ठी पत्री भेजी आज और जान जान बाद में हम उन श्रोताओं तक भी धन्यवाद बोला जो उनके एतवार दिन हम तक अपना ईमेल चिट्ठी पैटे ये भगत सुनदा हम रतन सिंह जौनसारी का स्वर मा यो पुरानी जौनसारी लोकगीत।

0: रतन सिंह जौनसारी का स्वरमा आपन यो जौनसारी गीत सुन। इन बोले जाए कि 70 का दशक मा यु गीत रिकॉर्ड करे गया और वे का बाद देखा इतना सालों बाद भी हम वे गीत याद करना चाहूँ और वे गायक कलाकार थे भी याद करना चाहूँ।
1: जी
0: किले कि कुछ लोक कलाकार हमार बीच निरे उनका गीतों था याद करे कि हम तो जमन याद आ जान। अब कार्यक्रम में के लगे चिट्ठी पत्री को यो कार्यक्रम छो तो एक माँ एतवारा दिन जो भाई बंधुओं हम तक अपना अनुरोध गीत सुन अखुणे चिट्ठी पैटे ऊँथ है धन्यवाद देना भगत आ गया।
1: बिल्कुल ध्यानी जी, और चिट्ठी पैटोन वाला छिन विकास सकलानी जी यो नाम ते फरमाइश भेज थे ममता पांडे, विजय कार्की, मनोरमा रावत, पीताम्बर सिंह चौहान यून सबिन जो चो एतवारा दिन अपनी फरमाइश हम तक भेजी।
0: सकलानी जी ने इबरी दादू सुन नौ भी लिखियो चाहे आपन छोड़ दे विनीता सकलानी।
1: अच्छा विनीता
0: सकलानी, तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन अपना ई मेल हम तक पहुंचे और ये काम न करता कि अब फिर प्यारा दिन आप लोगों की चिट्ठी पत्रियों का दगड़ी दोबारा से उपस्थित होला। भारे चिट्ठी पता एक दा जरा फिर लिख दिया
1: चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप हम ते अपनी चिट्ठी भेज सकदन, और अगर हाथ से लिखना चाहन तो वे को पता चिट्ठी ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून।
0: तो पिन कोड से 2480001 और पंवार जी एक बात
1: हाँ
0: हद तक लिखी चिट्ठी
1: हाँ
0: और तो कंप्यूटर पर भी तो अंगला चल दे वो भी तो हाथ ही चल
1: बिल्कुल सही बोलिया
0: है ना। लेकिन जो साधारण डाक से डाक विभाग की जो चिट्ठी हम बना चुका वो एक पता भी आप तो बताया चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 2480001। और अब है एक दा फिर मिलना सुनारा कार्यक्रम ग्राम जगत।

तो दगड़ियों, अभी आप सुनना छा आज को विशेष कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। और अब कार्यक्रम तो अगने बढ़ोदा और चलदा कुमाऊं का छोड़ और सुनदा ज्योति उप्रेती का स्वरमा यो सुंदर सी गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: दगड़िया भी आप सुनना चाह कुछ रंतरेबार, और वैसे पहले आपन सुनी कुमाऊनी गीत स्वर छ ज्योति उप्रीति को, और अब घड़ी की उसी बतानी चाहिए कि समाचारों को वक्त होना चाहिए, तो कुछ ही देर में आप सुनना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में की गई मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने पर रोक लगाई। और विकसित भारत जी रामजी योजना के शुभारंभ अवसर पर चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय राज्य कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में आज मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक अभ्यास का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित विभिन्न राहत व बचाव अभियानों ने वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीकों, त्वरित निर्णय क्षमता और टीम वर्क की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की है। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने मॉक ड्रिल के दौरान प्राप्त अनुभवों और कमियों का गंभीरता से विश्लेषण करने और सभी जिलों को 3 दिन के भीतर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और राहत व बचाव तंत्र की वास्तविक क्षमता का व्यापक परीक्षण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को केवल राहत व बचाव तक सीमित न रखकर जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और तकनीक आधारित प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाए। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना और राज्य के सभी जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने SDRF, NDRF और अग्निशमन विभाग द्वारा लगाए गए आधुनिक राहत व बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
5: राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा किया जाएगा। साथ ही नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति मिल सके, इस पर भी कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में खेल एवं

0: में युवा कल्याण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र की राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप राज्य में नई खेल नीति तैयार करने तथा उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार हल्द्वानी में अगले माह से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम, राष्ट्रीय खेलों से विकसित खेल अवसंरचना के रखरखाव और 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की तैयारियों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक में बताया गया कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक 48 मिनी स्टेडियम बन चुके हैं, जबकि 10 का निर्माण जारी है। वहीं लोहाघाट में देश के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज और गौलापार स्थित राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए गांव को जोड़ने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षति की जानकारी लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
1: भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें किसी परिवार रहते हैं वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहां पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपए डीएम साहब ने इसके लिए सूचित कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोदने की है, उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय है चेक डैम लगाना है उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारे सुबह होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से किस्त में
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और हिमालयी क्षेत्र में मानसून के सक्रिय होने के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा इनर लाइन परमिट जारी करने पर विचार किया जाएगा।
3: आज 2 जुलाई 2026 को उत्तराखंड में मॉनसून आगमन पर और क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं, इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रेवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनके सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को वर्तमान में स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
0: रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने मॉनसून के दौरान केदारनाथ यात्रा पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ करने की श्रद्धालुओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है, लेकिन लगातार हो रही वर्षा और मौसम के बदलाव को देखते हुए यात्रियों को प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।
4: श्री केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है और बरसात के कारण और चूंकि छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं तो यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि बरसात के महीनों में विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रेनकोट इत्यादि जो वस्तुएं हैं उनको साथ लेकर के चलें। कई बार आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर आपको थोड़ी देर रुकना भी पड़ सकता है, कई जगह लैंडस्लाइड भी रहते हैं, तो अलर्ट होकर के चलना है। शासन और प्रशासन से और आपदा प्रचारण केंद्र से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं आप उनका पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार तीर्थयात्री के तौर पर यात्रा।
0: विकसित भारत जी रामजी योजना के शुभारंभ अवसर पर आज चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण प्रतिभागियों को दिखाया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और संभावित लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि जिले में योजना के सफल और

0: अभी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
1: हमारे राज्य में भी विधि जी योजना का शुभारंभ किया गया है और ये योजना में पहले हमारे 268 कार्य थे जो कि अब की बढ़ा करके 318 कार्य कर दिए गए हैं और जो पहले 100 दिन का रोजगार मिल रहा था वो अब 125 दिन का रोजगार ग्रामीणों को मिल पाएगा, मजदूरों को मिल पाएगा। और साथ ही इसमें बहुत सारे जो ऐसे कार्य थे जो पहले नहीं कर पा रहे थे या जो बहुत आवश्यक थे तो वो भी अब किए जा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि ऐसी अवसंरचनाएं भी डेवलप की जा सकेंगी जिससे कि विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित चमोली बन पाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिलों में की गई मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने पर रोक लगाई और विकसित भारत जी रामजी योजना के शुभारंभ अवसर पर चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर ग्राम जगत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत है। मैं छू आपको दगड़िया जयप्रकाश पवार और अब एक बार फिर चलना गद्य से पद्य की ओर और सुनना गढ़वाली गीत स्वर्च रवि गुसाई को।

दगड़ियों अभी आप सुनना छा गढ़वाली गीत स्वर छौर रवि गुसाई को और दह लगाना छा कि चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप हम तय अपनी चिट्ठी भेज सकदन, अपना विचार भेज सकदन, कार्यक्रम कन लगणु च कमी च वे का बाबत भी आप जरूर हम तय चिट्ठी में अपना बात विचार जरूर भेजला। तो कार्यक्रम बटोल को वक्त होणु च लेकिन जान जानू आप तय सुनना एक कुमाऊनी जोड़ा स्वर्च दया शंकर फुलारा को।

दगड़ियों दयाशंकर फुलाराका गया ये गीत का दगड़ा ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम अब यखिमु संपन्न हुँदो। जयप्रकाश पवार तय आज्ञा देवा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़ोली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार, राज्य में विकसित भारत जी रामजी योजना लागू, अकुशल श्रमिकों थे वित्तीय वर्ष में 125 दिनों को रोजगार व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन के निर्देश दिन। सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कार्यली जैसे चिकित्सकों थे आधुनिक तकनीकों का अनुरूप प्रशिक्षित करे जय साग। और मौसम विभाग ने भोल, नैनीताल और बागेश्वर खूण ऑरेंज और राज्य के अन्य सभी जिलों खूण येलो अलर्ट जारी कर। राज्य में मनरेगा के जगह पर विकसित भारत जी रामजी योजना 42 बटे लागू करेगा। इन योजना से अकुशल श्रमिकों थे एक वित्तीय वर्ष 125 दिनों को रोजगार का प्रावधान करेगा।
1: केंद्र सरकार ने योजना का तहत राज्य खुणी 300 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित कैरी। ग्राम्य विकास विभाग का सचिव धीराज गब्रियालन बताया कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC पूरी भेज चुके हैं। उन बचा सभी जॉब कार्ड धारक परिवार और श्रमिकों से अपील कैरी कि वो एक सप्ताह का भीतर अपना संबंधित ग्राम पंचायत या विकास खंड कार्यालय में जाके EKYC जरूर करा ले, ताकि उनके योजनाओं का तहत अकुशल श्रम रोजगार को लाभ सुगमता से मिल सकू। उन बताया कि वर्तमान में मनरेगा का अंतर्गत चलना कामों को विकसित भारत जी राम जी योजना में अनुमन्य कार्यों का अनुसार समाहित करे जालू। येगा खातिर सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमता विकास का खातिर जिला स्तर पर कार्यशालाओं को आयोजन भी करे जालू। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन, मैं रविन्द्र सिंह।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों से प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने बोली कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नीचे बल्कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बोली कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटण होने पूर्व तैयारी फटफटाक, निर्णय बढ़िया समन्वय और आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र को क्षमता थे सुदृढ़ बनाने को दिशा में महत्वपूर्ण पहल च। उन्होंने बोली कि यू केवल एक अभ्यास न बल्कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और राहत और बचाव तंत्र के वास्तविक तैयारियों को व्यापक परीक्षण च। उन्होंने बोली कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाना बल्कि आपदा जोखिम थे कम करण, जनधन को सुरक्षा सुनिश्चित करण च। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खुण नामांकन आमंत्रित करीन। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष का बच्चों को असाधारण उपलब्धियों खुण दिए जान। नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि 31 जुलाई चे। मंत्रालय ने बताया कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर करे जय सकदन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करण वाला बच्चों थे प्रदान करे जान। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करण वालों थे भी दिए जान। हरेला पर्व ये बार देहरादून जिला में 15,50,000 पौधा लगाना का लक्ष्य रखे गया। 16 जुलाई बटे शुरू होने वाला हरेला अभियान 1 माह तक चाललू। ये दौरान पौधारोपण के माध्यम से इको टूरिज्म थे भी बढ़ावा दिए जालू। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के बोलन चो कि यू अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रह गया बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनलू। यहाँ कुण सभी विभागों थे रोपण स्थलों को चयन कैरी माइक्रो स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिए गए। अभियान की निगरानी खूण विशेष हरित कंट्रोल रूम स्थापित करे जालू। वन विभाग के अनुसार लगे जाने वाला पौधों में 50% फलदार और 4 प्रजाति के होला और उनका संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी अगला 5 वर्षों तक तय करे जाली। सभी विभागों थे 10 जुलाई तक गड्ढों की खुदाई, जैविक खाद, ट्री गार्ड और पौधों के परिवहन की व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिए गया।
2: वलिमा प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर ली, जैसे चिकित्सकों थे आधुनिक तकनीकों को अनुरूप प्रशिक्षित करे जय साख। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने यह घोषणा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में कहरी। श्री उनियाल ने बोली कि वर्ष 2026 आखिरी तक सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे जाली। उन्होंने बताया कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों को अलग कैडर भी बने जालू, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं थे और अधिक मजबूत करे जय साख। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं को 32 चिकित्सकों थे डॉक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, 3 चिकित्सकों थे आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड और 3 चिकित्सकों थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करे गया। केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमक प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन थे लेकि पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित करे गया। बैठक में कार्यक्रम से जुड़िया विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपड़ा अपड़ा विभागों की कार्य योजनाओं और प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने बोली कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांवों के विकासक मुख्य धारा से जोड़न च वक निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाण च।
3: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहां पर अभी आयोजित की गई थी, जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहां से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर, यहां से फिर उसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है, तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है। और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंप्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज है वो टूरिज्म आधारित वहां पर जो वर्क है वो ज्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म उसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं।
0: राज्य का विभिन्न क्षेत्रों में ब्याली हुई बर्खा के दगड़ दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में दस्तक दियाल। आज भी राजधानी देहरादून सहित विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश हुए। पिछला 24 घंटों के दौरान पर्वतीय जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज करे गया, जैसे मौसम सुहावनो हुए गया। मौसम विभाग ने भोल, नैनीताल और बागेश्वर जिला खूण ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी जिलों खूण येलो अलर्ट जारी कर। विभाग के अनुसार राज्य में 6 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा का दौरा जारी रहने की संभावना छ। मौसम विभाग ने स्थानीय नागरिकों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम पूर्वानुमान थे ध्यान में रखे की यात्रा करने की अपील करी। विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचन, मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकन और नदी नालों और गाड़ गदरों से दूर रहने की सलाह भी दे। कांवड़ मेला ये साल वर्ष 30 जुलाई बटे 11 अगस्त तक आयोजित होला। मेला की तैयारियों थे लेकिन हरिद्वार जिला प्रशासन व्यवस्थाओं थे अंतिम रूप देन शुरू करियाल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों थे 25 जुलाई तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिए गए। बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं को समीक्षा करे गए। जिलाधिकारी ने बोली कि कांवड़ यात्रियों थे सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्रशासन का प्राथमिकता। ऊल बोली कि विद्युत, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, कांवड़ पटरी मार्ग, झाड़ियों कटाई, पेड़ों को लॉम्पिंग और अन्य तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने का निर्देश दिए गिन। दगड़म राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण थे निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करण, सड़क से निर्माण सामग्री हटाना खून भूले गया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस अधिकारियों थे भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना और सभी विभागों को दगड़ समन्वय बैठक की कार्य करने का निर्देश दे। आखिर में समाचार एक बार फिर से। राज्य में विकसित भारत जी रामजी योजना लागू, अकुशल श्रमिकों थे वित्तीय वर्ष में 125 दिनों को रोजगार की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन को निर्देश दे। सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर ली, जैसे चिकित्सकों थे आधुनिक तकनीकों को अनुरूप प्रशिक्षित करे जय साख। और मौसम विभाग ने भोल, नैनीताल और बागेश्वर खूण ऑरेंज और राज्य के अन्य सभी जिलों खूण येलो अलर्ट जारी करी। यहाँ का दगड़ ही गडोली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हों। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 6:59 और 47 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम उनके साथ कृषि जगत प्रस्तुत है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को संतोष फुलारा का नमस्कार। 100.5 MHz पर आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नियमित रूप से मौसम के अनुसार बोई जाने वाली फसलों के अलावा कृषि और बागवानी सहित अन्य जानकारियाँ देते हैं। हमारा उद्देश्य किसान साथियों को सामाजिक गतिविधियों और अन्य जानकारियों से भी अवगत कराना है, इसीलिए हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को भी शामिल करते हैं। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रामदाने की फसल में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि धान की रोपाई में वे कौन सी जरूरी सावधानियाँ हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी सुनते हैं जागरूकता संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: किसान साथियों, इस संदेश के बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रामदाने की फसल में किए जाने वाले सामयिक कार्यों पर। रामदाना, जिसे राजगीरा या चौलाई के नाम से भी हम जानते हैं, यह फसल कम लागत में बेहतरीन मुनाफा देने वाली एक नगदी फसल है। इसके मुख्य सामयिक कार्यों में बुआई के 20 दिन बाद पहली निराई और यूरिया का अगर प्रयोग और लगभग 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने जैसे कार्य इसमें शामिल होते हैं। रामदाने की फसल में होने वाले प्रमुख सामयिक कार्यों में सबसे पहले बुआई और खेत की तैयारी फरवरी मार्च या जुलाई अगस्त में करनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे किसान साथी ये करना चाहते हैं, रामदाने की खेती करना चाहते हैं, वे जो है अभी जुलाई और अगस्त के बीच में इसमें कर लें। इसमें खेत की बढ़िया जुताई बेहद आवश्यक है, 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करके पाटा लगा दें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। खाद और उर्वरक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद FYM इसमें मिला दें। रासायनिक रूप में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल दें। अब आती है बारी बुआई की। रामदाने के बीज बहुत ही महीन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इसे कतारों लाइनों में बुना आवश्यक है। पंक्तियों के बीच में 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बीजों को 3 गुना मिट्टी या रेत में मिलाकर खेतों में छिड़क लें। प्रारंभिक देखभाल 20 से 25 दिन बाद शुरू करें। बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद खेत की पहली निराई गुड़ाई आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण पर भी आप गंभीरता से काम करें, क्योंकि जो आप उसमें पोषक तत्व डालेंगे, ऐसा न हो कि वो सब खरपतवार में ही ख़त्म हो जाए, आपके जो पौधे हैं उस पर नहीं लगेगा, इसलिए खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। खेतों में जो अवांछित पौधे होते हैं, जिन यानी कि खरपतवार जो होते हैं, उनको समय समय पर निकालते रहें। पहली बार उर्वरक आप समय पर डालें। आधी नाइट्रोजन लगभग 30 किलोग्राम की मात्रा इस समय जड़ों के पास दें। वनस्पति की वृद्धि का समय अब आएगा और 40 दिन की फसल में कि उनकी जड़ों में मिट्टी चढ़ानी आप शुरू कर दें। पौधों को गिरने से बचाने के लिए 40 से 45 दिन की अवस्था में पौधों की जड़ों पर आप मिट्टी लगाना शुरू कर दें। मिट्टी चढ़ाने से पहले बची हुई यूरिया जो है, नाइट्रोजन जो है, उसकी मात्रा डालकर हल्की सिंचाई कर लें। सिंचाई प्रबंधन भी किसान साथियों बेहद आवश्यक है। यदि वर्षा न हो रही हो तो आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई आप करें। कटाई और मड़ाई का कार्य 90 से 110 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। जब फसल के पत्ते पीले पड़ने लगें और बालियां सूखने लगें तो फसल को जमीन के पास काट लें। कटी हुई फसल को कुछ दिनों तक धूप में सुखाकर डंडे से पीटकर या फिर आप थ्रेसर की मदद से दाने को अलग कर सकते हैं। रामदाने की खेती के कई लाभ भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है जंगली जानवरों का नुकसान का खतरा नहीं रहता है। रामदाने की फसल में एक विशेष महक और हल्के से इसमें कांटे होते हैं, इसीलिए नीलगाय या जो आवारा जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, इसको नहीं चढ़ते हैं। इस फसल में पानी भी कम लगता है, जिससे जल संचयन आप कर सकते हैं। संरक्षण की दिशा में आपका महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा अगर आप इस खेती को करते हैं तो। इस फसल में अन्य फसलों की तुलना में पानी की आवश्यकता कम होती है और इसमें आप इस क्योंकि ये मोटे अनाज में इसको गिना जाता है और बाज़ार में बहुत अच्छी मांग है। और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस तरह के हिसाब से करेंगे, तो इसमें जानकारी आगे भी जारी रहेगी। अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का, आइए सुनते हैं रागिनी।

0: किसान साथियों, इस अल्प विराम के बाद एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। अगर आप भी अपनी पसंद के लोकगीत या रागनियां सुनना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को हमारा एक कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग होती है। समय आप नोट कीजिए, 1:30 बजे, 1:30 से जो है रिकॉर्डिंग शुरू होगी 2 बजे तक। तो इस बीच आप अपनी जो फरमाइश हैं, जो आप लोकगीत सुनना चाहते हैं, रागनियां सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, आप नोट करेंगे, 7088001382। फ़ोन नंबर एक बार और बता रहे हैं, आप नोट करेंगे, 7088001382। तो हमारा ये लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आपकी पसंद के लोकगीत और रागनियाँ सुनाते हैं। तो आप फ़ोन करके अपने पसंद के लोकगीत या रागनियाँ सुन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम शुरू में आपको ये बता रहे थे कि आज हम आपके लिए धान की रोपाई में बरते जाने वाली जरूरी सावधानियों पर हम जानकारी देंगे। जानकारी दे रहे हैं केवीके ढकरानी के हरिद्वार से हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता।
1: नमस्कार किसान साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी देहरादून के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं धान की रोपाई करते समय किन बातों का हमारे किसान साथियों को ध्यान रखना है ताकि अच्छी फसल हम ले सकें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार सभी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि जुलाई माह ये चल रहा है और हमारे किसान साथी जो हैं अब रोपाई की पूरी तैयारी में है, क्योंकि सही समय पर अगर हम रोपाई करते हैं तो अच्छी फसल हमें प्राप्त होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने दिन की नर्सरी हमारी अगर हो गई है तो वो हम रोपाई के लिए उसको समझ सकते हैं।
2: रोपाई वाले धान में
1: जी
2: नर्सरी का बड़ा महत्व है। सामान्य दृष्टि में 21 से लेकर 28 दिन के मध्य की पौध जो है यह रोपाई के लिए बहुत ही उत्तम रहती है
1: जी।
2: लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ते हैं या भूमि की ऐसी दशाएं हैं कि वहां पर थोड़ा ऐसी स्थिति है कि पौधों की गति धीमी होती है या ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम थोड़े ज्यादा अवधि के पौधे यानी कि 30 दिन से लेकर 35 दिन की जो पौधशाला होती है
1: अच्छा।
2: उसका प्रयोग करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि कितने दिन की हमारी नर्सरी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम पहले की बात करें तो जैसे पहले हम रोपाई से पहले बैलों से जब खेत तैयार करते थे तो 2-3 बार हम अक्सर अपने खेत को जोता करते थे, उसमें फिर पानी से घोल के अच्छे से कीचड़ बनाया करते थे। लेकिन आज की आधुनिक कृषि में जब हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अधिकतर जो हमारे किसान साथी हैं वो एक ही बार में अपने खेत को तैयार करते हैं। तो थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो एक बार खेत तैयार करना है, इससे उत्पादन में कुछ फर्क देखा गया है या ये विधि पहले की तुलना में सही है?
2: वर्तमान में देखते हैं जो कृषि मशीनीकरण है उससे ट्रैक्टर के द्वारा खेत की तैयारी होती है। इसमें समय का भी बहुत ज्यादा किसान भाई ध्यान नहीं रखते, चाहे दिन हो रात हो, क्योंकि व्यवहारिक है किसी भी समय मशीनी से काम आसानी से किया जा सकता है
1: जी।
2: तो वैसे जो विज्ञान है तो विज्ञान दोनों के पीछे एक ही है कि खेत इस प्रकार तैयार हम करें। यदि हम गीली विधि से खेत तैयार कर रहे हैं और रोपाई का धान लगा रहे हैं तो रोपाई के लिए खेत की तैयार होने की 2-3 ऐसी सिद्धांत हैं कि वो आपके खेत में तैयार रहे। एक तो खेत की ऊपरी सतह मुलायम और एकसार हो ताकि पौधों को आसानी से रोपा जा सके
1: जी।
2: दूसरा इसका जो आवश्यकता है वो ये है कि भूमि में जल धारण क्षमता और पानी का ऊपर से नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो बहाव होता है उसको रोकना। तीसरा, जो खेत में खरपतवार, पहली फसल के अवशेष या धान से पहले उगाई गई कोई ऐसी दलहनी फसल जो हरी खाद के रूप में ली गई हो, इसको सड़ाकर और धान के पौधे जहां पर रोपे जाएंगे उन जड़ क्षेत्र में उनको सड़ा गलाकर स्थापित करना, तो ये उद्देश्य है। अब चाहे ट्रैक्टर के द्वारा खेत तैयार किया जाए या बैल के, ये यदि सिद्धांत हम ध्यान रखेंगे तो हमारा दोनों ही विधि में उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन बैलों की तुलना में जहां समय अधिक लगता था तो उसमें एक विज्ञान जुड़ जाता था कि हम देर तक खेत में पानी भरकर रखते थे। इसको हम लॉन्ग सबमर्जेंस अवस्था कहते हैं, यानी कि खेत को जलमग्न रखते थे। तो जब हम खेत को जलमग्न रखते हैं तो उसमें भूमि का जो तापक्रम है, जो जड़ क्षेत्र का है, वह अपने औसत दर्ज स्तर पर निर्धारित हो जाता है, क्योंकि उस समय मानसून की बारिश भी आने लगती है, पौधों की जड़ें भी रोप दी जाती हैं। लेकिन वर्तमान में खेत की कैसी स्थिति है, पहली फसल से कौन सी फसल काटी गई है, उसके अवशेष किस प्रकार के हैं, और चूंकि शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा खेत तैयार किया जा रहा है तो किसान साथ के साथ पानी छोड़ते हैं और 10 या 15 मिनट में आधे एकड़ की या 1 घंटे या 2 घंटे में 1 एकड़ खेत को तैयार कर देते हैं रोपाई के लिए। तो उसमें होता सामान्य तरीके से ये है कि जहां पर मिट्टी गहरी है तो वहां तो नमी पहले से ही रुकी होती है और खेत तैयार अच्छा होता है, लेकिन जहां पर दोमट मिट्टी में थोड़ा रेतीले कण ज्यादा है वहां पर यदि हम साथ के साथ खेत तैयार करते हैं तो उसमें जड़ क्षेत्र में नीचे की भूमि, यहां तक भी देखा गया है प्रयोग के आधार पर, कि सूखी रह जाती है, तो यहां पर धान की ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि कहते हैं, वह प्रभावित होती है और धान का उत्पादन कम रहता है।
1: जी, खेत तैयार करते समय डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि ट्रैक्टर से भी हम खेत तैयार कर सकते हैं, बैलों से भी कर सकते हैं, क्या खेत तैयार करते समय कुछ खाद वगैरह जैसे गोबर खाद हमारे किसान साथी डालते हैं तो क्या ये भी डालने हैं, और कितनी मात्रा में हमें ये धान की पौध की रोपाई के लिए खाद?
2: पर्यावरण की दृष्टि, उपलब्ध स्रोत और हमारे प्रदेश की कृषि स्थिति, तीनों को दृष्टिगत रखते हुए यह अति आवश्यक है कि हर खेत में हम ऐसी फसल उगाएं फसल चक्र में जो दो या एक फसल के बाद दलहनी हो। जैसे गेहूं की कटाई के बाद जो समय बचता है मई जून और लगभग पहला हफ्ता जुलाई का, तो यहां पर हमारे 50 से 60-70 दिन तक कभी कभी मिलते हैं हमको। तो ऐसी अवस्था में लोबिया, सनई, मूंग या ढेंचा को यदि किसान भाई उगाते हैं तो यह हरी खाद का हमारी फसल मानी जाती है और इससे भूमि की अवस्था, भूमि का भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों गुणों में सुधार होता है, खरपतवार नियंत्रित होते हैं और रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भरता हमारी कम हो जाती है। क्योंकि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यदि हम ढेंचा या सनई की फसल ले रहे हैं तो लगभग 200 किलोग्राम नत्रजन तक संचित होता है, उसी अनुपात में फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए कम से कम उत्पादन देने वाली जो हरा पदार्थ है या उसका आकार है पौधे का, मूंग, उससे भी हमें 40 से लेकर 60 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर फसल से मिल जाती है। और उसके साथ साथ लाभ क्या मिलता है, फसल में यानी कि भूमि में हमारा जीवों की, जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि हो जाती है, पानी रोकने की जो क्षमता है भूमि की वो बढ़ जाती है, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों गुण अच्छे हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो धान में उगने वाले खरपतवार हैं उन खरपतवारों का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है। तो यह एक हरी खाद का लाभ है। दूसरा, जो किसान भाई हरी खाद की फसल नहीं ले पाए तो उपलब्धता के आधार पर 5 से लेकर 10 टन यानी कि 50 क्विंटल से लेकर और 100 क्विंटल तक गोबर की सड़ी कंपोस्ट हम खेत में कीचड़ तैयार करने से पहले सूखी जुताई के समय समतलीकरण के बाद भूमि में मिला दें और फिर खेत में पानी भरने के बाद रोटावेटर की सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से या दूसरे पडलर जो हैं उनकी सहायता से खेत को तैयार यदि करते हैं तो इससे हमारा जो उर्वरकों की और खाद की आवश्यकता है वह पूर्ण हो जाती है। और खाद का उपयोग हमेशा मृदा जांच के आधार पर करना चाहिए।
1: जी, जी, जी।
2: यदि दो फसल आपने लगाई, दोनों ही अनाज वाली फसल है, धान गेहूं फसल चक्र, और जिंक का प्रयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको एक वर्ष में किसी एक फसल में 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर का प्रयोग अंतिम जुताई के समय पर कर सकते हैं, चाहे धान में कर लें चाहे गेहूं में कर लें। सामान्यतः देखा जा रहा है कि पोटाश की भी मात्रा कहीं कहीं हमारे कम देखी जा रही है जबकि नत्रजन की मात्रा हम अधिक प्रयोग उपलब्धता के आधार पर कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक को धान की खेती में जरूर मृदा जांच के आधार पर करें। और यहां पर यह भी सिफारिश की जाती है कि खेत में कीचड़ या लेव बनाते समय, जिसको हम पडलिंग कहते हैं, गारा बनाना कहते हैं, उसी समय जो हमारे रासायनिक उर्वरकों की मात्रा है, चाहे एनपीके 12:32:16 या डाइअमोनियम फॉस्फेट, डाइअमोनियम फॉस्फेट अगर ले रहे हैं तो अभी भारतीय अनुसंधान संस्थान जो भोपाल में हमारा स्थित है तो वहां से

0: और लगभग लगभग 20 से 25 किलोग्राम जो पोटास है, यदि हम खेत में देंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय अंतिम पड़लिंग पर दे दें तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसकी प्रभाविकता भी अच्छी रहती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस पौध का हमने रोपण करना है, नर्सरी निकालते समय किस तरह की सावधानी का पालन हमारे किसान साथियों को करना चाहिए?
0: किसान भाइयों को सिफारिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से
1: जी
0: कि अपनी योजनागत तरीके से खेत की रोपाई के समय पौध को निकालें। बहुत अधिक समय पहले पौध निकालकर उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम नहीं है और
1: हाँ
0: हो सकता है वहां कल्ले कम निकलें। तो आप एक दिन पहले पौध को निकालकर या 2 दिन पहले अगर आपने निकाल लिए तो उसका जो भंडारण है सुरक्षित पेड़ के छायादार और नम स्थान पर करना होगा
1: हाँ
0: और हो सके उसको गीली मिट्टी में आप रख सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन कोशिश क्या करनी है कि जब हम पौध निकाल रहे हैं खेत से तो पानी भरकर ही पौध निकालने की जो प्रथा है वह उत्तम मानी जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। उसको फिर जहां पर रोपाई करनी है उस खेत को तक ले जाने के लिए आप ऐसा स्थान चुनाव कीजिए जहां पौध को छायादार स्थान पर रखी जा सके। यदि पौध बहुत अधिक लंबी है तो रोपाई से पहले पौध की ऊपर की चोटियां हटा देनी चाहिए।
1: अच्छा
0: इससे कीट नियंत्रण और पौधों के स्थापन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
1: हाँ
0: और रोपाई में 2-3 सावधानी और रखनी है। यदि किसान भाई बीज का उपचार नहीं कर पाए थे तो यहां पर भी हम जैविक खेती में भी और सामान्य खेती में भी दोनों ही परिस्थिति के अनुसार पौध का उपचार कर सकते हैं। इसके लिए जो पंत बायो एजेंट 3 है हमारा
1: हाँ
0: जैविक विधि में, इसको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से घोल लेंगे और पौध की जड़ों को इसमें 10 से 15 मिनट तक डुबाएंगे
1: अच्छा
0: और इसी में नीम का तेल जो है लगभग प्रति लीटर पानी के हिसाब से 5 मिलीलीटर मात्रा यदि डाल लें या गुठली के अर्क से बना हुआ जो हमारा घोल है उसको डाल लें इसके अंदर, तो
1: हाँ
0: इससे दीमक, फफूंद और जीवाणु तीनों का ही पौध को उससे सुरक्षा होती है। और पौध जब हम स्थापन करते हैं तो इससे पौध का जो वृद्धि है बहुत अच्छी होती है। रासायनिक विधि में यहीं पर किसान भाई
1: हाँ
0: प्रति लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर भी उपचार कर सकते हैं। और यहीं पर हम जो आजकल वैकल्पिक स्रोत हैं उर्वरकों के जैसे फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया
1: हाँ
0: या एनपीके कंसोर्टिया उसकी मात्रा को भी हम पौध उपचार में डालकर उपयोग कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, रोपाई करते समय किन बातों का हमने ध्यान रखना है?
0: पौधों की रोपाई का अंतरण तो प्रजाति के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से आपको रखना चाहिए। जहां पर सबसे उत्तम माना गया है कि 1 वर्ग मीटर में लगभग 20 से लेकर 25 जगह पर पौधों की रोपाई होनी चाहिए। यानी
1: अच्छा
0: कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 सेंटीमीटर यदि हम रखते हैं तो इससे 25 स्थानों पर पौधों की रोपाई की आवश्यकता होती है।
1: जी
0: पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान पर कम से कम 2 पौधे, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर 2 से 3 पौधे और जो संकर प्रजातियां हैं उनमें केवल एक स्थान पर एक पौधा और बासमती में 1 से 2 पौधों की रोपाई हम कर सकते हैं।
1: जी
0: यदि भूमि कम उर्वर है तो बासमती की जो हमारी देसी प्रजातियां हैं उनको हम पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर करते हुए रोपाई यदि करें तो इससे प्रति इकाई क्षेत्र में अच्छे और वांछित संख्या बनेगी और अच्छा उत्पादन हमको मिलेगा। ध्यान क्या रखना है, रोपाई करते समय खेत में अधिक पानी भरा ना हो। खेत में पानी ऐसा हो कि रोपाई करते समय आसानी रहे। अधिक पानी रहने से पौध उखड़ जाती है या खेत में से पानी यदि निकलकर किसी कारणवश बह जाए तो सारी पौध बह जाती है। तो केवल रोपाई के हिसाब से पानी खेत में रखें। और दूसरा ध्यान रखें कि पौध की रोपाई करते समय अंगूठे को जड़ के ऊपर ना रखें, पौध की सीधी रोपाई करें। यदि हम रोपाई गहरी कर देते हैं तो इससे हमारे कल्लों की संख्या कम बनती है और यदि जड़ मुड़ी हुई हम लगाते हैं तो इससे भी हमारे कल्लों की संख्या कम बनती है और हमारी पौधों की बढ़वार पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: जी डॉक्टर साहब, रोपाई के बाद अक्सर हम देखते हैं कि खरपतवार प्रबंधन के लिए हमारे किसान साथी दवा का भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा बताएं कि खरपतवार प्रबंधन किस तरह से हमारे किसानों को करना चाहिए?
0: सबसे अच्छा जो उपाय है वह यह है कि रोपाई करने के बाद 1 से 2 दिन के भीतर पानी का स्तर 1 सप्ताह तक अवश्य बनाए रखें। और जहां पर हमारे किसान भाई जैविक विधि से खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन खेतों में किसान भाई जो हमारा सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल घर का भी ले सकते हैं, बाजार से भी खरीद सकते हैं। और जो आरा मशीन या मोटी रेत, आरा मशीन की जो पाउडर होता है लकड़ी का जो चिरान होता है
1: जी
0: उसे जो पाउडर प्राप्त होता है, तो 2 लीटर सरसों का तेल 20 से 25 किलोग्राम लकड़ी के बुरादे में मिलाकर और खड़े खेत में रोपाई के बाद 1 हेक्टेयर

0: क्षेत्रफल में यदि इसको थोड़ा थोड़ा करके बुरकाव कर देते हैं तो तेल की मात्रा पानी की सतह के ऊपर फैलती है और जो हमारे खरपतवारों के बीज होते हैं उनके अंकुरण को बाधित करती है। तो
1: अच्छा
0: जैविक विधि में यह विधि हम अपना सकते हैं। दूसरी विधि यह है कि जैविक विधि में प्रथम जो हमारे रोपाई का जो बाद 20 से 25 दिन की अवस्था पर एक निराई हाथ से और दूसरी निराई 35 से लेकर 45 दिन के मध्य यदि कर दें तो यह उत्तम माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक खेती में किसान भाई यहाँ पर कई प्रकार के समन्वित खरपतवार प्रबंधन अपना सकते हैं, जिसमें खेत की तैयारी, फसल चक्र, उन्नत समय पर बुआई, सही नियत पर जो है उसकी रोपाई, और यहाँ पर ध्यान रखें कि रोपाई करने के बाद में ब्यूटाकलोर या अनिलोफोस की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, बाजार में मिलने वाला जो पदार्थ है वो 50% मात्रा मिलता है, तो 2 गुनी मात्रा यानी कि 2 लीटर ब्यूटाकलोर या लगभग लगभग 1.5 से लेकर 1 लीटर 800 मिलीलीटर मात्रा अनिलोफोस की 600 लीटर पानी में घोल बनाकर रोपाई के 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हमको खेत में एक समान रूप से प्रति हेक्टर के हिसाब से डाल देनी है।
1: अच्छा
0: यदि 20 से 25 दिन की अवस्था पर कोई खरपतवार खेत में दिखाई दे तो पहले तो सिफारिश ये की जाती है कि निराई करें, लेकिन निराई के लिए मजदूरों की अनुपलब्धता चलते बिस्पायरीबैक सोडियम 10% का जो घोल है दवाई का चुनाव करें, 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, और 600 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, इसका एक समान रूप से छिड़काव कर सकते हैं। यहीं पर पिनोक्सिलैम जो हमारा रसायन है नया उसको भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब अंत में चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि कब तक हमारे किसान साथियों ने धान की रोपाई कर देनी है।
0: जो प्रजातियां 145 दिन तक पक सकती हैं या इतना समय पकने में लेती हैं उनकी रोपाई किसान भाइयों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में अवश्य कर देनी चाहिए मैदानी क्षेत्रों में,
1: जी
0: और पर्वतीय क्षेत्रों में तो चूंकि रोपाई हम पहले लगभग 15 दिन पहले चलते हैं तो वहां पर रोपाई का जो समय है वो जून का मध्य समय है, क्योंकि वहां पर पौध भी हम पहले ही डालते हैं।
1: जी
0: जो प्रजातियां 115 से लेकर 125 दिन के मध्य हैं वहां पर मैदानी क्षेत्रों में किसान भाई उसकी रोपाई कर सकते हैं जुलाई मध्य से लेकर और जुलाई के अंत तक,
1: अच्छा
0: और पर्वतीय क्षेत्रों में जो घाटी वाले क्षेत्र हैं वहां पर तो यही समय रहेगा, लेकिन थोड़े ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उसकी रोपाई जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य संपूर्ण कर लें।
1: जी, तो डॉक्टर संजय कुमार, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज धान की रोपाई के संबंध में आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक साझा की। आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे धान की रोपाई में बरते जाने वाली जरूरी सावधानियां, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विकास चमोली। चलिए, अब समय हो चुका है एक अल्प विराम का, सुनते हैं रागिनी।

के साथ साथ ऐसे अल्प विराम के साथ और तमाम जानकारियों के साथ हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सायं के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। राज्य में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू। अकुशल श्रमिकों के वित्तीय साल में 125 दिनों का रोजगारक प्रावधान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामेल, मानसून है पहली, राज्य स्तरीय मॉकड्रिल में प्रभावी और तकनीक आधारित आपदा प्रबंधक निर्देश दें। सरकार राज्य की मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर ली। जेल चिकित्सकों के आधुनिक तकनीकों अनुरूप प्रशिक्षण दी जा सकल। और मौसम विभाग अल भूल नैनीताल बागेश्वर रख लीजिए ऑरेंज व राज्य दूसर सपै जिलों के लीजिए येल्लो चेतावनी दी रखी। और अब समाचार विस्तारल। राज्य में मनरेगा जाग पर विकसित भारत जी राम जी योजना भूल बठे लागू है जाली। यो योजना के भीतर अकुशल श्रमिकों के एक वित्तीय साल में 125 दिनों का रोजगारक प्रावधान करी गयो।
2: केंद्र सरकार योजना के भीतर राज्य के लिए 300 रुपया रोजक मजदूरी दर निर्धारित कर रखी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव धीरज गर्ब्याल बता कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC पूरी है गे। उन्होंने शेष सभी जॉब कार्ड धारक परिवारों और श्रमिकों थे प्रार्थना कर रखी कि वो एक सप्ताह के भीतर अपन संबंधित ग्राम पंचायत या विकास खंड कार्यालय में जेबिर EKYC जरूरी कर रहे हैं। जैल उनको योजना के भीतर अकुशल श्रम रोजगारक लाभ भलीके मिल सको। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मनरेगा के भीतर चलनी कामों को विकसित भारत जी राम जी योजना में अनुमन्य कार्यों के अनुसार समाहित करी जाल। एक लीजिए सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों क्षमता विकासक लीजिए जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन ले करी जाल। आकाशवाणी देहरादून के लीजिए समाचार कक्ष बटी मी ज्योति जोशी।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून है पहली मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों के प्रभावी आपदा प्रबंधक निर्देश दें। उनलको की उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व न है बल्कि राज्य सरकारक सपन है ठूल प्राथमिकता छू। उनलको की मानसूरक दौरान संभावित आपदाओं थे भली के निपटनक लीजिए पहली है पूर्व तैयारी झट्ट फैसल भल तालमेल और आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग बहुत जरूरी छू। मुख्यमंत्री को कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता के मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल छू। उनल को कि केवल एक अभ्यास नहीं है बल्कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल संचार व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता व राहत एवं बचाव तंत्रक वास्तविक तैयारियों के व्यापक परीक्षण छू। उनल को कि राज्य सरकारक लक्ष्य केवल आपदा राहत पुजूर्ण है बल्कि आपदा जोखिम के कम करण जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करण छू। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लिजी नामांकन आमंत्रित करें। यो पुरस्कार 5-18 सालक नानतीनों के लिजी असाधारण उपलब्धियों के लिजी दी जानन। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई छू। मंत्रालय बताए कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर करी जा सकनन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल सामाजिक सेवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण कला व संस्कृति क्षेत्र में भल प्रदर्शन करण वाल नानतिनन के दी जा। यो पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहसक प्रदर्शन करण वाल नानतिनन के दी जा। हरियाल त्योहार में यो बार देहरादून जिले में 15,50,000 पौधे लगोणक लक्ष्य रखी गयो। 16 जुलाई बठे शुरू होण वाल हरियाल अभियान एक महर जाने चलोल। यो बीच पौध लगोणक माध्यमल इको टूरिज्म के लिए बढ़ावा दी जल। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान कोण छू कि यो अभियान केवल पौध रोपण जारे सीमित नी रोल बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनोल। यह लीजिए सपे विभागों के रोपण वाल जागों चयन कर बेर माइक्रो स्तर पर काम योजना तैयार करने का निर्देश दी गई। अभियानक निगरानी के लिए विशेष हरित कंट्रोल रूम स्थापित करी जाल। वन विभाग अनुसार लगाई जाने वाले पौधन में 50% फल वाल और चारा प्रजाति खोल व उनर संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी अगिल 5 साल तलक सभी विभागों के 10 जुलाई जाने गड्ढों की खुदाई व जैविक खाद ट्री गार्ड और पौधों परिवहन की व्यवस्था पूर्ण करने का निर्देश ले दी गई।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपु लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपु लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: राज्य सरकार सपे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करल, जेल चिकित्सकों के आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दी जल और स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में मंत्री सुबोध उनियाल यो बताए कि घोषणा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर राज्य की दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में करी। श्री उनियाल को कि साल 2026 तक अंत जाने सपे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूर कर ली जाली। उन्हें बताया कि राज्य में विशेष चिकित्सकों के लिए अलग कैडरली बनाई जाल, जेल स्वास्थ्य सेवाओं के और जात मजबूत करी जा सकोल। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 32 चिकित्सकों के डॉक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, 3 चिकित्सकों के आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड व 3 चिकित्सकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानल सम्मानित करी गयो। केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमक प्रभावी और बखत पर क्रियान्वयन के लीबेर पिथौरगढ़क जिलाधिकारी आशीष भटगई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। बैठक में कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न विभागों के अधिकारियों अपूर्ण अपूर्ण विभागों की कार्य योजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी को की वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांव विकासक मुख्य धारा से जोड़ते हुए वाक निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लूट छू।
4: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहाँ पर अभी आयोजित की गई थी, जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर, यहाँ से फिर इसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है, तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है। और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज हैं वो टूरिज्म आधारित वहाँ पर जो वर्क है वो ज्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म उसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं।
1: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भोल भे बरखक दगड़ दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में दस्तक दिहालो। आज ले राजधानी देहरादून दगड़ विभिन्न जगहों में हल्क हल्क बर्ख हुए है और पछिल 24 घंटे के दौरान पहाड़ी जिलों में अधिकतम तापमान में बहुत कम दर्ज करी गयो। जैल मौसम बहुत भल है गयो। मौसम विभाग भोल नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी व दूसर सपे जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी करी। विभाग अनुसार राज्य में 6 जुलाई जाने हल्के है मध्यम बर्ख हुणक और विभागल गाड़ गधेरों थे दूर रुणक सलाह दी राखी। कांवड़ म्याल यो साल 30 जुलाई बठे 11 अगस्त जाने आयोजित होल। म्यालक तैयारियों के लिए हरिद्वार जिला प्रशासनल व्यवस्थाओं के अंतिम रूप दिन शुरू कर हालो। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सपे विभागों के 25 जुलाई जाने जरूरी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दी गई। बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करी गई। जिलाधिकारी को कि कांवड़ यात्रियों के सपे जरूरी सुविधा उपलब्ध करूँ प्रशासन की प्राथमिकता छू। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरल पुलिस अधिकारियों के भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन की विस्तृत काम योजना तैयार करण और सपे विभागों दगड़ तालमेल बनावेर काम करने निर्देश देन। और आखिर में मुख्य

0: समाचार एक बार आज ही। राज्य में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू, अकुशल श्रमिकों के वित्तीय साल में 125 दिनों को रोजगार को प्रावधान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, मानसून है पहली, राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीक आधारित आपदा प्रबंधन को निर्देश दें। सरकार राज्य की मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर ली। जेल चिकित्सकों के आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित दी जा सकल। और मौसम विभागल भोल नैनताल बागेश्वर लीजी ऑरेंज व राजक दूसर जिलों के लीजी चेतावनी दी रखी। ये कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक खत्म हो। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 होने को हैं। अब आप सुनेंगे अपना मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म पारसमणि से। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सुनेंगे श्रेया घोषाल और शान की आवाज में, जिसे लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत MM करीम का है और फिल्म का नाम है जिस्म।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साया के 7:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति उम्मीद की किरण।
1: श्रोताओ नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं योशिता पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के ग्राम बसेठ के एक ऐसे युवा से जिन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल महानगरों में ही नहीं बल्कि गांव की मिट्टी में भी मिल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा किसान दीपक कनवाल की। आपको बता दें कि दीपक दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और लुधियाना जैसे शहरों में नौकरी करते थे, जिन्होंने मेट्रो सिटी का जीवन छोड़कर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। और इन्होंने करीब 10-12 वर्ष पहले अपने गांव लौटकर खेती को अपनाया और आधुनिक तकनीकों से सब्जी उत्पादन को अपना व्यवसाय

0: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन कुछ युवा इस सोच को बदल रहे हैं। दीपक कनवाल भी ऐसे ही युवाओं में शामिल हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि आधुनिक कृषि तकनीकों का सही उपयोग किया जाए तो गांव में रहकर भी सम्मानजनक आय अर्जित की जा सकती है। दीपक ने अपने खेतों में मौसमी और उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। उन्होंने खेती को केवल पारंपरिक तरीके तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नई तकनीकों, बेहतर बीजों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया और आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। आज यह सब्जी उत्पादन के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हुए सालाना करीब 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कनवाल ने बताया कि शहरों में नौकरी करने के दौरान परिवार और गांव से दूरी बनी रहती थी, ऐसे में उन्होंने घर लौटकर खेती करने का निर्णय लिया। वर्तमान में वह कद्दू वर्गीय सब्जियों, शिमला मिर्च, बैंगन समेत विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती से न सिर्फ केवल आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि घर पर रहकर घर वालों की देखभाल भी कर पा रहा हूं। इसके साथ ही बुजुर्ग पिता की सेवा भी करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग से समय समय पर मिले सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन का उन्हें काफी लाभ मिला है, जिसके कारण वह खेती के माध्यम से लगातार बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। अब वह बाजार में अधिक मांग वाली अन्य सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
1: घर पे ही मतलब 10-12 साल से घर पे हूँ और ये सब्जी का स्टार्ट किया हूँ। घर की परिस्थिति भी ऐसी थी कि मतलब घर पे अकेले, पापा भी बूढ़े हो चुके हैं थोड़ा, और खेत मतलब जोतने का एक चीज़ का काफ़ी दिक्कत था, तो इसी वजह से मैंने फिर धीरे धीरे एक दो खेत करके ये सब्जी का उत्पादन का स्टार्ट किया। अभी होते होते काफ़ी मतलब खेतों में लगा चुका हूँ।
0: वहीं उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि प्रगतिशील किसान दीपक कनवाल कई वर्षों से सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं। सीमित भूमि होने के बावजूद वह बेहतर उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपक जैसे किसान अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है और जो खेती को स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बना सकते हैं।
2: सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, आज हम इनके सब्जी प्रक्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें कि इनके द्वारा शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू वर्गीय अन्य काफी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इनके द्वारा मल्चिंग शीट में ये सभी सब्जियां उगाई जा रही हैं, जो कि विभाग द्वारा इन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा इन्हें सब्जी बीज, कीट व्याधि नाशक, औद्यानिक यंत्र, एंटी हेलमेट और काफी अन्य जो औद्यानिक निवेश है उपलब्ध कराए गए हैं।
0: दीपक कनवाल का कहना है कि गांव की जमीन केवल खेती का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मजबूत आधार है। उनका मानना है कि यदि युवा खेती को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन काफी हद तक कम हो सकता है। दीपक की सफलता से आसपास के गांवों के कई युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। वे उनसे खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेते हैं और अपने खेतों में नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह दीपक केवल एक सफल किसान ही नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। उत्तराखंड सरकार और कृषि विभाग भी समय समय पर किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। यदि युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक खेती को अपनाए तो खेती लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। दीपक कनवाल का उदाहरण इसी दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनी कृषि की ताकत को पहचानें। आधुनिक सोच, नई तकनीक और दृढ़ संकल्प के साथ खेती को अपनाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है, बल्कि गांवों को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। बागेश्वर के ग्राम बसेट के दीपक कनवाल ने अपने कार्यों से यह संदेश दिया कि सपने पूरा करने के लिए स्थान नहीं, बल्कि मजबूत इरादे और निरंतर मेहनत की आवश्यकता है। उनका यह प्रयास निश्चित रूप से उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये थी दीपक कनवाल की प्रेरणादायी कहानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए उम्मीद और प्रेरणा की एक नई मिसाल पेश करते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां हिमालय की चोटियां, निर्मल नदियां और प्राकृतिक सौंदर्य देश दुनिया को आकर्षित करता है, लेकिन अब उत्तराखंड एक और वजह से चर्चा में है। पहली बार राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है। यह उपलब्धि न केवल मत्स्य पालकों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के लिए भी एक नया अध्याय है। आइए जानते हैं कैसे उत्तराखंड की मछलियां अब विदेशी बाजारों तक पहुंच रही हैं और इससे किसानों के जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में मत्स्य पालन को एक व्यवसाय के रूप में तेजी से बढ़ावा मिला है। राज्य में उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक नेपाल निर्यात किया गया। सरकार का कहना है कि इससे मत्स्य पालकों की आय बढ़ेगी और उत्तराखंड के ट्राउट मछली को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पिथौरागढ़ की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की ओर से उत्पादित ट्राउट मछली को पहले गुजरात वेरावल भेजा गया, जहां प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया। इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को करीब 23,50,000 रुपए की आय हुई है। विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में उत्तराखंड की ट्राउट मछली पहुंचाने की तैयारी कर रही है। विभागीय मंत्री का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। राज्य में मत्स्य पालकों की संख्या बढ़ी है, उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हजारों लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले हैं।
3: उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को पहली बार विदेश के मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। ये पहली बार उत्तराखंड जब से बना है ये अचीवमेंट हमको मिला है। आपके यूरोपियन मार्केट्स और आपके यूएई के मार्केट्स में जो ट्राउट की फिश का वेट होता है वो हमारे यहाँ की ट्राउट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उनको फिले बनाने में आसानी होती है। तो हमने उस पर काम किया अगले 4 से 5 महीनों में, और उसी के साथ साथ पहला कंसाइनमेंट हमारा 5 टन का हमने एक इंटरनेशनल मार्केट को भेजा, जिससे कि हमारे लगभग 23,50,000 रुपए हमारे 33 फार्मर्स को उसका फायदा पहुंचा है। ये 3 मत्स्य समितियां हैं जिनके माध्यम से हमने ये करा है।
0: आज उत्तराखंड में ट्राउट और अन्य उच्च गुणवत्ता वाली मछलियों की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ रही है, और यह उपलब्धि केवल व्यापार तक सीमित नहीं।

है, बल्कि यह बताती है कि स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो पहाड़ भी वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में यह सफलता युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। पहले जहां रोजगार के लिए पलायन एक बड़ी समस्या थी, वहीं अब कई युवा अपने गांव में ही मत्स्य पालन अपना कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह भी इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे मछली उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं।

0: उत्तराखंड की इस उपलब्धि से यह संदेश मिलता है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांवों के पारंपरिक संसाधनों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह सफलता और नई ऊंचाइयों को छुएगी तथा देवभूमि के हजारों परिवारों के जीवन में समृद्धि का नया अध्याय लिखेगी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून।
1: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, जहां पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय से रमेश चंद करेंगे बातचीत। बातचीत का विषय है घुटना प्रत्यारोपण क्यों जरूरी।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर BKS संजय को। आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे घुटना प्रत्यारोपण क्यों उपयोगी है आज के समय में। डॉक्टर BKS संजय जी, कार्यक्रम आपको बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा अभी के घुटनों का प्रत्यारोपण क्यों जरूरी है, पहले तो आप ये देखिए कोई भी चीज को प्रत्यारोपण किया जाता है तो क्यों किया जाता है। यदि घुटनों की बात करें तो आज के समय में नी की जो आर्थराइटिस या घुटनों की आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। कई तरह की आर्थराइटिस होती है, यहाँ पे हम दो ही तरह की बात करेंगे। एक तो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो लक्षण होते हैं इसमें कई जोड़ इसमें खराब होते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजली घुटना होता है। अपने देश में तो घुटना होता है और विदेशों में कूल्हा होता है। घुटनों की संरचना के बारे में यदि श्रोता समझ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जितना जोड़ में फ्रिक्शन कम होता है उतना ही जोड़ कम घिसता है। इसको साधारण शब्दों में समझे तो जो चीज दो सरफेस जब ज्यादा खुरदरे होंगे और उनको रग लेंगे तो दर्द भी होगा। जॉइंट में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक ऊपर की बोन जिसको कि फीमर कहते हैं, एक नीचे की बोन जिसको कि टिबिया कहते हैं, इसके बीच में होती है मेनिस्कस और कार्टिलेज होती है। समय के साथ साथ क्या होता है, बीच की चीज जो है वो घिसने लगती है। घिसने के बाद एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ने लगती है जबकि दर्द होता है, और जब कोई खुरदरी हो जाएगी तो दर्द होगा। घिसने के बाद इनमें टेढ़ापन आने लगता है। आपने देखो होंगे कुछ बूढ़े लोगों का और कुछ श्रोता जो है खुद इससे पीड़ित होंगे तो उन्हें पता ही होगा घुटने हैं टेढ़े हो जाते हैं, पैर उसमें लगने लगते हैं, तो वो टेढ़े होने की वजह से और ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। यदि आप स्टेबिलिटी की बात करें तो जो चीज ज्यादा सीधी होती है वही ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसमें एक तो होगा जोड़ घिस गया तो उसके बाद से उसमें खुरदरापन आ गया, दूसरा जोड़ टेढ़े होने के बाद वो एक तरफ घिसता है दूसरी तरफ नहीं घिसता, तो वो अंदर की तरफ घिसने लगता है तो पैर और टेढ़े होने, और जब कोई चीज टेढ़ी होने लगी कि तो जैसा मैंने तीसरी कहा कि स्टेबिलिटी नहीं होती। यदि जॉइंट स्टेबल है और मोबाइल है और पेन फ्री है तो बेस्ट है। इनमें होता क्या है कि जब खुरदरे हो जाए तो दर्द शुरू हो जाएगा, टेढ़े हो जाएंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा, जब टेढ़े हो जाएंगे तो लचक आने लगती है।
2: डॉक्टर साहब, पैर टेढ़े होने के कारण क्या है?
3: आप इसको देखिए कि हम लोग हैं, यदि हम किसी भी एक डंडे को लें खास तौर से जो मुलायम हो और उस पे हम 10 किलो वजन रखते हैं, और अब इसकी 10 किलो के ऊपर इसको 20 किलो वजन रखे तो डंडा टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? जब वजन लोगों का बढ़ जाता है तो पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो जब हमारा वजन ज्यादा होता है तो जोड़ जल्दी घिसने लगते हैं और पैर जल्दी टेढ़े होने लगते हैं, ये साधारण बात है।
2: डॉक्टर BKS संजय जी, भी आपने बताया घुटने खुरदरे हो जाते हैं, ज्यादा उनका यूज होता है, तब जब बात आती है डॉक्टर्स से तो वो कहते हैं कि हमें चलते फिरते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, जब काम करेंगे तो घुटनों का तो प्रयोग होगा।
3: दो चीजें हैं कि आपने देखा कि जो लोग काम करते हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, यदि आप काम नहीं करते हैं तो हमारी हड्डियां फ्लेक्सिबल भी हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जब काम नहीं करेंगे तो भुरभुरी हो जाती हैं और जब आप एकदम काम करने लगते हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। अब आपने दूसरा सवाल कहा कि डॉक्टर तो कहते हैं चलो, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब खुरदरे हो जाते हैं तो उनका चलना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दर्द हो जाता है, लेकिन गति ही जीवन है। यदि आप चलेंगे नहीं तो

0: आपका हार्ट भी फंक्शन नहीं करेगा। आपने देखा कोई हार्ट के लिए कोई डॉक्टर आपको अलग से एक्सरसाइज बताता है? कोई डॉक्टर नहीं बताता। हार्ट के लिए एक्सरसाइज है यदि आपके हाथ पैर चलेंगे, शरीर चलेंगे, तभी है। मैं साधारण सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि हम चल रहे हैं तब हार्ट की बीट को देखिए, और जब दौड़ने लगे तो हार्ट की बीट को देखिए, तो इनमें फर्क ये होता है। अब इसका क्या होता है, संतुलन करना होता है। डॉक्टरों का कहना सही है और मरीजों का पूछना भी सही है, डॉक्टर साहब जब हमें दर्द है कैसे चल सकते हैं, लेकिन अब कारण उसका क्या होता है, इसी को बैलेंस करना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग पहले से चलते रहते हैं उनको ये दिक्कत नहीं होती है। उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा, यदि उनको पैर से नहीं चल पाते तो वो हाथों की एक्सरसाइज करें, स्टैटिक एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। देखा जाए तो ये सब चीजें शरीर में खून के दौरों को बढ़ाती है। दूसरी चीज घुटनों के लिए है, यदि वो कहें चल नहीं पाए तो उनको बैठ के, जिसको स्टैटिक एक्सरसाइज कहते हैं, घुटने को सीधा करना, घुटने को मोड़ना, सिरे को सीधा करना, घुटने को मोड़ना, यदि इतना भी करते हैं तो घुटने की कसरत होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने घुटनों के दर्द की बात की, टेढ़ेपन की बात की, घुटने खुरदरे हो जाते हैं, इस वजह से समस्याएं हो जाती हैं, क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र विकल्प है या दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से भी उपचार संभव है?
0: लोगों की दो धारणा थोड़ी सी गलत है। जैसे कि आपने पूछा है कि क्या यही है, ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में होते हैं, पहले जब शुरुआत होती है तो उस समय थोड़ा सा ही घिसना शुरू होता है, थोड़ा सा ही इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें दर्द की गोलियां बिल्कुल काम कर जाती है। और दर्द की गोलियां भी क्या, यदि घर पे आप सिकाई कर लेते हैं, यदि गर्म पानी से या ठंडे पानी से, तो उससे भी आराम मिल जाता है। यदि आप कोई क्रीम लगा लें या तेल लगा लें तो उससे भी आराम मिल जाता है। ये सब अर्ली स्टेज में, जब उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है तब आपको फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ानी। ना तो फिजियोथेरेपी ज्वाइंट को ठीक करती है, ना ये टेढ़ेपन को कुछ हद तक ठीक करती है। हाँ, लेकिन जो फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज करने के, जो फिजियोथेरेपी की दूसरी मॉडलिटीज हैं, चाहे वो अल्ट्रासोनिक कहले, टेंस कहले, तो वो दर्द को आपको कम करते हैं। इसके अलावा यदि अर्ली स्टेज पे टेढ़ापन के लिए होता है तो ब्रेस भी आती है। सुना होगा, एडवर्टाइज भी देखा होगा कि साहब हमने वो ब्रेस लगा ली और मेरे घुटनों का दर्द ठीक होगा। उसका कारण क्या है, यदि आपका डंडा टेढ़ा हो रहा है, सॉफ्ट है, तो उस पर एक और डंडा लगा लीजिए तो कड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसका ये प्रिंसिपल होता है, जब आप पे झुकाव नहीं होता तो उसका दर्द नहीं होता और ज्यादा एक पिन पॉइंट प्रेशर नहीं पड़ता। एक तो आप पूरे पंजे पे चलना और एक अंगूठों पे चलना, तो अंगूठों पे चलना ज्यादा आसान है या पूरे पैर पे चलना आसान है? तो वो जो चीजें हैं कि जब ब्रेस वगैरह वो काम करो। अब आपने कहा दवाइयाँ, दवाइयाँ आती हैं, दर्द की भी दवाइयाँ आती हैं। कुछ दवाइयाँ आज के टाइम में ऐसे आने लगेंगी जो आपके कार्टिलेज को बनाने में भी मदद करती हैं। तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं। जो लोग कहते हैं हमें रोज दवाई नहीं खानी है साहब, कहाँ सुबह शाम खाएंगे, तो कुछ इंजेक्शन भी आते हैं, वो इसमें ज्वाइंट में डाल दीजिए। अब मैं आम बात लोगों से पूछता कि डॉक्टर साहब क्या हम भी लगवा सकते हैं इंजेक्शन? एक इसमें देखिए कि जब बॉल बेयरिंग होती किसी ज्वाइंट को देखिए, चाहे आप मिक्सी को देखिए, घर में जो आपके पास मशीन हो या बड़ी मशीन को देखिए, यदि उसमें बॉल बेयरिंग बुश है तो उसमें ग्रीस काम करता है। मान के चलिए बॉल बेयरिंग ही घिस गई तो क्या ग्रीस काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इंजेक्शन कब काम करे। तो अर्ली स्टेज में तो काम करता, अब कब उन लोगों को लगवाने चाहिए? कुछ लोगों ने बिल्कुल कसम खा ली हो कि मुझे ऑपरेशन कराना है, जैसा उसको हम कहते हैं कि घोड़े को पानी के पास ले जा सकते लेकिन पानी नहीं पिला सकते। अनुभव क्या है कि यदि मैं उन्होंने या मैंने भी कोई चीज खराब देख ली उसी तरह की, तो क्या हमारी हिम्मत पड़ेगी?
1: नहीं पड़ेगी।
0: तो इसमें क्या होता है, हर जीव का विकास है वो वातावरण से होता। यदि उन्होंने कहा ऑपरेशन भी कराया तब भी दर्द हो रहा है तो लोग ऑपरेशन नहीं कराते।
1: डॉक्टर साहब, ये नी प्रत्यारोपण की किस तरह की सर्जरी आज के समय उपलब्ध है?
0: मैं आ रहा था कि अब रहते सर्जरी, इसमें नी के घुटनों के लिए दो ही तरह की सर्जरी होती, एक रीअलाइनमेंट, एक रिप्लेसमेंट। रीअलाइनमेंट को समझिए अंग्रेजी शब्द है, जैसे टेढ़ी कोई चीज हो गई तो उसको सीधा करना। एक इसमें प्रोसीजर होता है रीअलाइनमेंट का, लेमैन भाषा में रीअलाइनमेंट है, टेक्निकल वर्ड है ऑस्टियोटमी। बोन को काटा जाता है, जो टेढ़ापन है उसको सीधा किया जाता है, और उसमें जो सीधापन करने में जो जगह निकलती है उसमें एक हड्डी का टुकड़ा लगा के उसमें डाल दिया जाए, तो प्लेट स्क्रू से फिक्स कर दिया जाए। इसका प्रिंसिपल क्या है, आप इसको ऐसे देखें, हर नी ज्वाइंट में दो हिस्से होते, एक अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा, और यूजली इसमें अंदर का हिस्सा घिसता है और बाहर का हिस्सा नहीं। क्या होता है कि हम अंदर के हिस्से का यदि एंगल चेंज कर दें, जिस टेढ़ी चीज को सीधी कर दें, तो वो दूसरी तरफ घिसने लगती है। अब मैं उसको कैसे कहता हूँ, यदि वही जोड़ हमारा 50 साल चला है तो मैं समझता हूँ कि अब दूसरी तरह का हिस्सा है वो 15-20 साल तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरा अपना अनुभव है, मैंने आज से कुछ लोगों के 2004 में ये ऑपरेशन शुरू किया था, आज भी उनको 20 साल तक बहुत अच्छे हैं, उन्हें कुछ कराना ही नहीं पड़ा। तो जो रीअलाइनमेंट का ऑपरेशन होता है, एक टेक्निकली आसान काम है, सस्ता है और अच्छा है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि नी रीअलाइनमेंट ऑपरेशन के बाद आदमी चाहे तो उखड़ू बैठ सकता है, पालती मार सकता है, पहाड़ पे चढ़ सकता है, खेत खलियान का काम कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसके उल्टा यदि आप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है। यदि मैं यहाँ पे विजुअल तो नहीं दिखा सकता हूँ कि उसमें क्या होता है कि यदि आप करोगे तो वो लड़ने लगे। रिप्लेसमेंट होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि रीअलाइनमेंट में बोन को काटा, हड्डी का टुकड़ा लगाया, प्लेट और स्क्रू को लगा। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों बोन को, घुटने की ऊपर की बोन जो कि फीमर कहलाती है, घुटनों की नीचे की बोन टिबिया कहलाती है, उसको यूजली 1 से 1.5 सेंटीमीटर काटा जाता है, दोनों को हिस्सों को मिला, मतलब लगभग लगे 1 से 2 सेंटीमीटर काटा जाता है, और जो काटते हैं उसके जगह पे स्टील के 2 पार्ट लगा देते हैं, एक फीमर के लिए अलग और टिबिया के लिए अलग, और बीच में उसमें एक प्लास्टिक डाल देते हैं। ये ऑपरेशन होता है रिप्लेसमेंट। अब जिसमें जो प्लास्टिक डाल देते हैं वो बिल्कुल अपना स्टील के ऊपर खिसने लगता है, उचलने लगता है।
1: लेकिन आजकल डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी भी नी रिप्लेसमेंट में या नी ट्रीटमेंट में यूज होने लगी है।
0: देखिए प्रिंसिपल जो है, चाहे हम इसको ओपन करें और चाहे हम इसको रोबोटिक करें, करना हमें यही होता है कि नीचे के जो खुरदरा हिस्सा होता है उसका 1 सेंटीमीटर काटा, नीचे की बोन का खुरदरा हिस्सा 1 सेंटीमीटर काटा, और उस खुरदरे हिस्से पे के हमने स्टील का जो कंपोनेंट है वो जोड़ दिया, ऊपर फीमर में नीचे टिबिया में, बाद में इंसर्ट डाल देते हैं, वो की प्लास्टिक का होता है। अब ये करने के लिए ओपन का, हाँ बिल्कुल सही है कि ओपन ऑपरेशन करने में चीरा बड़ा लगा, इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी में चीरा कम लगता है और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और क्यों रोबोटिक सर्जरी को लोग प्रेफर करते हैं कि आप कोई भी ऑपरेशन करें, चाहे वो रीअलाइनमेंट करें, रिप्लेसमेंट करें, लेकिन घुटने का अलाइनमेंट होना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी के बाद या जो ओपन सर्जरी आपने बताई, इनके कितने समय बाद व्यक्ति घर जा सकता है?
0: रोबोटिक सर्जरी में 1 दिन 2 दिन के बाद, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं। एक समय था जब मैं सोची, आज से लगभग 45 साल पहले जब मैं हाउस ऑफ 1980 में कर रहा था, यूजली लोग 2 हफ्ते के बाद घर जाते थे और डॉक्टर भी भेजते थे। वो क्यों? वो टाके कटाके जाते थे, क्योंकि उन दोनों ना तो घरों में बिजली थी, ना पानी थे, ना हवा थी, ना इतनी सुविधाएं थी, ना नर्स था ना डॉक्टर था। तो लोग प्रेफर करते थे कि हम अस्पताल में जाएं और ठीक होके जाएं। उनका तो हमने ये भी देखा कि आप अस्पताल के कमरे में ना रखा, अस्पताल के बाहर बरांडे में रख दो, अस्पताल के पार्क में रख दो, लेकिन वो डॉक्टर के सुपरविजन में रहे। आज क्या हो गया, बहुत से लोगों के घर हैं वो अस्पताल से ज्यादा अच्छे हैं। पहले बहुत लोगों को डर था ऑपरेशन, अब ऐसा कोई डर नहीं है।
1: सर्जरी के कितने समय बाद डॉक्टर बी के संजय जी व्यक्ति अपना सामान्य दैनिक जीवन है वो शुरू कर सकता है?
0: 4 से 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। एक तो जख्म भरने में 2 हफ्ते लगते हैं और लोग चलने लगते हैं, वॉकर के सहारे, सपोर्ट के सहारे चलने लगते हैं, और जब वो चलने लगते हैं धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और 4 से 6 हफ्ते तक नहीं लगते हैं। यदि लोग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं तो इससे भी कम लगता है।
1: क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है?
0: देखिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये आम लोग पूछते हैं, क्या कोई जवान आदमी के बाल काले किए जाते हैं? नहीं, क्योंकि उसके पहले ही काले होते। रिप्लेसमेंट या नी का ऑपरेशन तभी किया जाता जब घुटना इतना घिस जाए, और 20-25 साल का आर्थराइटिस की वजह से नहीं होता, लेकिन हाँ चोट लग जाए, खुरदरा हो जाए, तब हो जाता।
1: क्या उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई, इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति का भी नी रिप्लेसमेंट किया जाए?
0: ऑपरेशन आज मैं यदि मानूं तो मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ एज इज नो बार
1: जी,
0: क्योंकि मैंने 98 साल का ऑपरेशन किया है जिसको कि रिपोर्ट किया गया, 100 साल का भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है सबके। लेकिन हाँ जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, और यदि आपको जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं, अब उसको यदि डायबिटीज है तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा, यदि उसको हाइपरटेंशन है तो उसको रिस्क बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा, फिर किसी का वजन ज्यादा है तो उनमें ये समस्याएं बढ़ जाती है।
1: जिन व्यक्तियों का घुटना रिप्लेसमेंट किया गया है, हाँ, कितने समय तक उनका घुटना साथ रहेगा?
0: देखिए आपने बहुत एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। एक तो सबसे पहले ऑपरेशन कितना अच्छा हो जाए, यदि बनते ही फाउंडेशन ही टेढ़ी हो गई तो दीवार टेढ़ी होगी कि नहीं, तो सीधी दीवार ज्यादा चलेगी या टेढ़ी दीवार ज्यादा चले, तो ये जो टेक्निकल गलती हो जाते हैं, जो झुक रहा है वो जल्दी झुक ही जाएगा।
1: ऐसे लोगों को जो घुटने के दर्द से पीड़ित हैं क्या कहना चाहेंगे नी रिप्लेसमेंट को?
0: मेरे कहने का मतलब सबसे पहले तो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोग क्या कर सकते हैं, एक तो अपने वजन पे कंट्रोल कर। यदि आदमी की हाइट है 160 सेंटीमीटर और उसमें से 100 घटा दो तो उसका वजन होना चाहिए 60 किलो। यदि हम लोग वजन अपना नॉर्मल रखते तो ज्वाइंट भी इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं जितने कि वजन वाले लोग या जो भारी वजन का है उसके खराब होते हैं।
1: जिन लोगों का नी रिप्लेसमेंट हुआ है उन्हें क्या हिदायतें अपनानी चाहिए?
0: एक तो ये है कि उखड़ू बैठना उनके लिए बैठना नहीं चाहिए। कभी भी दर्द हो तो उस पर गर्म पानी से सिकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब भी दर्द होता है दर्द का मतलब है इन्फ्लेमेशन, और यदि उसने गर्म से आप हो कर दिया सिकाई, यदि किसी चीज को पकाना है तो उसको गर्मी दो तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है, उससे इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं।
1: नॉर्मल भी घुटने में अगर हमारे दर्द है या सूजन है तो हमें सिकाई नहीं करनी है?
0: यूजली रिप्लेसमेंट के बाद या ऑपरेशन के बाद हम लोग तो सजेस्ट नहीं करते।
1: कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे श्रोताओं को देना चाहें ताकि उनके घुटने खराबी ना हो और रिप्लेसमेंट की जरूरत ही ना हो?
0: देखिए, मैं दो चीजें उनको जरूर कहूंगा। एक तो अपने वजन पे आप ध्यान रखें, दूसरा यदि आपको गठिया की शिकायत है तो गठिया के लिए डॉक्टर से इलाज लीजिए। तीसरी चीज है कि जैसे ही आपके थोड़े से पैर टेढ़े होने लगे तो इसमें फिजियोथेरेपी आप खुद भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, इसके आप ध्यान दें तो ये चीजें कम से कम होती है। और जैसे ही आपको दर्द की कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसको कि दर्द की या पेन किलर कहते हैं वो अपना कभी कभार ले लें, और यदि लगे ज्यादा है तो उनको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: डॉक्टर बी के एस संजय जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं को घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता पर आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, भी आपने सुनी स्वास्थ्य चर्चा। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 8:15:40। अब सुनते हैं रूना लैला के गाए हुए गीत सुगम संगीत में FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से।

इसी के साथ सुगम संगीत में ये कार्यक्रम समाप्त होता है, जहां आप सुन रहे थे रूना लैला के गाए हुए गीत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जहां पहला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म चुपके चुपके से। लता मंगेशकर के स्वर में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं SD बर्मन।

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहावना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहावना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे।

जार और संगीत लिया था हेमंत कुमार ने। प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म खिलौना से। लिखा है इस गीत को आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आवाज है लता मंगेशकर की।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से। श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:44:50 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
5: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त

0: लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। रूठना तेरा मेरी जान लिए जाता है, ऐसे नाराज ना हो, हंस के दिखा दे मुझको।

भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर को आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे आरडी बर्मन। अब अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, खुद बना लेती है होठों पर हंसी अपनी जगह।

जगजीत सिंह को आपने सुना फिल्म प्रेम गीत से, गीतकार इंदिवर और संगीतकार थे स्वयं जगजीत सिंह। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी के स्वर में, फिल्म राजकुमार से संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

प्यार के गीत गाते रहो, तुम सदा यूं ही मुस्कुराते रहो, जिंदगी के कठिन डगर में खुशियों के तराने गुनगुनाते रहो, हंसते हंसते कट जाएगा हर रास्ता, गम के बादलों से भी उम्मीदों का दिया जलाते रहो।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सुन रहे थे फिल्म रात और दिन से। आवाज थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत हमारे स्टूडियो की घड़ी में। रात्रि के 9:59 हुए हैं। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: रहे हैं।

0: प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and party.
0: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Keral ki prachin sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavata ki maukhik evam amurt सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पीके नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूरिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: Shri Margi Mathu is one of the foremost exponents of Koodiyattam, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Mourikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Mourikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Mourikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Mathu Dwara Prastut Chakyar Koot Ka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayan Bhattadiri. Katha Sandarbh Divya Pashupatastr Ki Prapti Ke Liye पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Koota performed by Shri Margi Mathu. Kiratam, author, Melpatur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kira.

राजा मेहंदी अली खान के लिखे और मदन मोहन के संगीत से सजे इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम था वो कौन थी, और इस गीत को हमारे पास सुनने की पेशकश की थी हरियाणा लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया ने। इसी के साथ धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया भी इस गीत को सुनना चाहते थे। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार ने। उसी के साथ कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा इस गीत को सुनना चाहते थे। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी भी इस गीत को सुनने के इच्छुक थे। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान ने इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी थी। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काम आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान और अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी के साथ बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद इस गीत को सुनने के इच्छुक थे। और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे ने इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी। अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर के स्वर में।

ये गीत आपने सुना फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर के स्वर में, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने। इसी के साथ गनगोला दातागंज से इसरत खान, शायरा बेगम रहूब खान, सावरीन बेगम शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान इस गीत को सुनना चाहते थे। और इस गीत को आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से सुनने के लिए लिख भेजा था ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव भी इस गीत को सुनना चाहते थे। और इस गीत को सुनने के लिए छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे पास फरमाइश आई थी प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा की। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना भी इस गीत को सुनना चाहते थे। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की थी। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इलमा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान इस गीत को सुनना चाहते थे। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। आवाज़ है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कभी खुशी कभी गम से सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में। और इस गीत को सुनना चाहते थे गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब। इसी के साथ इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश भेजी थी अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और साथियों ने। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और नमित आहूजा के साथ साथ गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले इस गीत को सुनना चाहते थे। और अब श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम का अंतिम गीत भी अब आपके सामने आने वाला है और ये लिया गया है फिल्म मोहरा से और इसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश भेजी थी शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल ने। साथ ही सोहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी इस गीत को सुनना चाहते थे। गांव हीरावाली फजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा भी इस गीत को सुनने के इच्छुक थे। और मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, शहन मंसूरी इस गीत को सुनना चाहते थे। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन

0: श्रोताओ, इसी के साथ आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून। हमारे स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओ, रात्रि के 10:59:52 हो गए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas,